इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रोजियो पनिन पसंदीदा।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: जी हाँ, आज सोमवार है। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत एक बातचीत सुनिए डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ। आपकी बातचीत का विषय है आयुर्वेद और उपचार।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी, एक सफल आयुर्वेदाचार्य जो अंबाला से है। यह कहना सही रहेगा कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेद का इतिहास 5000 साल से भी पहले का है। यह हम सबके स्वास्थ्य के साथ कैसे जुड़ा है, समझते हैं आज सरल शब्दों में अंबाला के जाने माने आयुर्वेदाचार्य, पंचकर्मा के जानकार डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी से। स्वागत आपका डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी स्टूडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: धन्यवाद। रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिल्पी शर्मा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं पिछले 20 सालों से आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी तरह के पेशेंट्स हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं। अंबाला में मेरा क्लिनिक है। मेरा मेन पर्पस है लोगों को आयुर्वेदा के लिए अवेयर करना। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो रोहतक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है और मुझे बचपन से ही आयुर्वेद के प्रति रुझान था। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद मैं अपने पेशेंट से जुड़ी और मैं आयुर्वेदा को और आगे लेके गई और यही मेरा लाइफ का पर्पस है, आयुर्वेदा के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देना।
2: सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है स्वास्थ्य के संदर्भ में, और आयुर्वेदा चिकित्सा अलग कैसे है?
3: आयुर्वेद बेसिकली 5000 साल पुरानी पद्धति है, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स नॉट अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट्स अ लाइफस्टाइल। आयुर्वेद जो है वो उसका पर्पस है स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, विच मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार व्यक्ति है उसका इलाज करना। तो आयुर्वेद ज्यादा प्रिवेंशन पे काम करता है रादर देन ट्रीटिंग अ पेशेंट। इसीलिए आयुर्वेद जो है एक दिनचर्या है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट का इलाज करना है। आयुर्वेद ये कहता है कि आप पहले ही अपने आप को बचा लो ताकि आप पेशेंट बनो ही ना। तो वो मेनली उसका फोकस रहता है कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपका खान पान कैसा हो, जिसकी वजह से आप बीमार ही ना हो। आयुर्वेद जो है वो हर पर्सन के लिए अलग है, इट्स अ साइंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्सन पे जो मेडिसिन काम करती है वो दूसरों पे काम नहीं करती। तो आयुर्वेद जो है सब पे एक समान नहीं है
2: जी।
3: क्योंकि आयुर्वेद जो बेस्ड है वो वात पित्त कफ पे है। आयुर्वेद ये मानता है कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, ये सब 5 तत्वों से मिलकर बनी है, आकाश भूमि पृथ्वी वायु और जल। तो ये जब 5 महाभूत आपस में मिलते हैं तो 3 तरह की एनर्जी बनाते हैं जिसको वात पित्त और कफ कहा गया है
2: जी।
3: तो ये तीनों ही एलिमेंट हम सब में बर्थ के टाइम रहते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट जो हैं इन तीनों ही एलिमेंट में से एक ऐसा दोष होता है जो कि डोमिनेट हो जाता है, बाकी 2 रिसेसिव फॉर्म में रहते हैं। तो वही आपकी प्रकृति बना देते हैं, उसी से आपकी फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्टेट बन जाती है, आप उसी तरह से एक्ट करते हैं। तो हर पर्सन की प्रकृति अलग है, हर किसी की अलग बॉडी टाइप है, और जब ये तीनों दोष जब बैलेंस में रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, और जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम जो है वो डिजीज हो जाती है। वो डिपेंड करती है कि कौन सा दोष इम्बैलेंस हुआ है, उसके हिसाब से हमारी डिजीज बन जाती है।
2: जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम आज सरल शब्दों में आयुर्वेदा को समझने की कोशिश करेंगे, आपने ये कहा कि ये हमारी एक जीवन शैली का एक तरीका है, क्या मैंने सही समझा?
3: बिल्कुल सही समझा आपने। बिकॉज आयुर्वेद में एक दिनचर्या डिसाइड की गई है कि अगर हम उस दिनचर्या को फॉलो करें तो हम बीमार ही नहीं होंगे
2: जी।
3: उसमें उन्होंने बताया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना
2: जी।
3: ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होगा कि आपकी जो वात दोष है वो शांत रहेगा। आपका जो सुबह अगर जैसे जो लोग लेट उठते हैं उनका कफ दोष बढ़ जाता है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, उस टाइम मेडिटेशन करने से, उस टाइम सैर करने से, पढ़ाई करने से, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टाइम माना गया है सुबह, वो वात का समय है। सुबह 2 से लेकर 6 बजे का समय वात का है। देखिए आयुर्वेद ने कितनी खूबसूरती से पूरे दिन को भी समय में बांट दिया है कि कौन कौन सा दोष किस टाइम पे डोमिनेंट होगा और आपको उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जीना है। सुबह 2 से 6 का टाइम वात का है, तो आपने उस टाइम मेडिटेशन करनी है, स्टडी करनी है और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, क्योंकि वो टाइम जो है वो वाइब्रेंट टाइम है, उस टाइम आप शांत रहते हैं। उसके बाद सुबह उठने के बाद 6 से 10 का टाइम कफ का टाइम है, तो उस टाइम पे अगर आप लेट उठेंगे तो आपसे उठा ही नहीं जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मुझे ये पूछते हैं कि मैम हमसे सुबह उठा नहीं जाता तो कैसे उठे। तो मैंने उन्हें कहा आप चाहे 5:45 पे उठ जाओ, 6 बजे के बाद नहीं उठना, उससे पहले उठना है, आप डेफिनेटली सुबह उठ जाओगे। तो उस टाइम एक तो उठने में दिक्कत होती है क्योंकि कफ बढ़ जाता है, तमस का टाइम हो जाता है वो। तो उस टाइम उठने से आपको क्या होगा कि आप बेटर फील करेंगे, एनर्जेटिक टाइम है वो, क्योंकि कफ का टाइम है, एंड्यूरेंस काफी अच्छी होती है। तो इस टाइम पे हम फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज का टाइम है ये, सुबह 6 से 10 और शाम को 6 से 10। तो ये दोनों ही टाइम कफ के हैं। उसके बाद जो तीसरा 10 बजे के बाद का जो टाइम है, 10 से 2 का टाइम, वो पित्त का टाइम है, यानी उस टाइम आपने डाइजेशन का टाइम है, जो कि मेन मील का टाइम है। आयुर्वेद मेन मील 10 से 2 के बीच में रिकमेंड करता है। तो उस टाइम अगर आप खाते हैं वो आपको प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, पित्त आपको एम्बिशियस बनाती है, तो आपकी जो उस टाइम पे आप जो भी आपके डिफिकल्ट टास्क हैं वो आप उस टाइम पे करिए। तो इस तरह से सुबह उठ के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, देन उसके बाद आपको मसाज करना, नस्य करना, जिसमें नेजल ड्रॉप्स डालते हैं ताकि आपके जो गर्दन के ऊपर के जितने भी अंग हैं उनके रोग ना हो, उसके लिए नस्य किया जाता है। देखिए अगर आप नस्य रेगुलर कर रहे हैं बचपन से ही आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आपको कभी भी आपके बाल सफेद नहीं होंगे, आपकी आईसाइट बढ़िया रहेगी, आपको थ्रोट से रिलेटेड इशू नहीं होंगे, तो बताइए बीमारी कहां से आएगी अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करेंगे। तो इसके बाद फिर दातुन करना, दातुन के लिए भी आयुर्वेद कहता है कि आप नीम और जामुन की दातुन करिए, और उसके बाद फिर बॉडी मसाज के लिए कहता है, जिसको अभ्यंग कहते हैं या स्नेहन कहते हैं आयुर्वेद में, उससे क्या होता है आपका वात दोष जो है वो बैलेंस रहता है। उसके बाद फिर आपको स्नान करने के बाद नहाने की सलाह देता है, फिर आपको भोजन करना है, उसके बाद आपको अपना काम करना है। मेन भोजन वो दोपहर के भोजन को आयुर्वेद में मेन माना गया है, मेन मील ऑफ द डे जो है वो लंच टाइम है आपका। तो उस टाइम आपको गरिष्ठ आहार करना है। ब्रेकफास्ट आयुर्वेद कहता है कि आप उस टाइम या तो फल फ्रूट का सेवन करिए या बिल्कुल हल्का आहार रखिए। मेन आहार आपका जो है वो दोपहर का टाइम है, क्योंकि वो पित्त का समय है। उसके बाद फिर आपको रात को भी अर्ली डिनर करने की सलाह देता है कि सूर्यास्त से पहले आपने डिनर कर लेना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो आप सोने के टाइम में और जो आपका डिनर का टाइम है उसमें 2-3 घंटे का फर्क हो जाता है, उसके कारण आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है सोने से पहले। और अर्ली सोने के लिए भी वो 10 बजे तक का टाइम कहता है, क्योंकि 10 से आगे 2 बजे तक पित्त का टाइम शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 10 बजे के बाद सोते हैं या 11 बजे के बाद सोते हैं तो आप सो ही नहीं पाएंगे, आपके जो स्लीप है वो डिस्टर्ब रहेगी 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे तक पित्त का टाइम है। आपने देखा होगा आजकल बच्चे भी 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो एक्टिव हो जाता है माइंड, आपकी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो आपको नींद आएगी कि नहीं आप डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन अगर आप 10 बजे सो गए हैं तो वो डेफिनेटली आपको बिल्कुल डीप स्लीप आएगी, और 10 से 6 बजे तक का आपका टाइम आयुर्वेद बताता है सोने के लिए, और 6 बजे से जस्ट थोड़ा पहले या 5 बजे अगर आप उठ सकते हैं तो वो बेस्ट टाइम है।
2: डॉक्टर साहब आपने जो जानकारी दी इसमें कई सारी चीजें हैं जो शायद हम आज के दौर में देख नहीं पाते हैं, खास करके आज के युवा, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया है। जब हमारे समय में सोने का टाइम होता था तब वो जाग रहे होते हैं, और जब हम सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम उठ जाते हैं तब वो सोए होते हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो किस तरीके से आज की जो नई पीढ़ी है उसको आयुर्वेदा के इन तरीकों से हम समावेश करें?
3: हाँ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं। जब कोविड का टाइम था उस टाइम लोगों को पीसीओडी बहुत ज्यादा हो गई थी, यंग जनरेशन को, मतलब हर 9 में से 1 बच्चे को पीसीओडी थी।
2: अच्छा।
3: तो उस टाइम क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने जैसे पेशेंट से पूछा कि आपका सोने उठने का टाइम क्या है, देन उन्होंने कहा कि जब हमारा काम का टाइम होता है हम जस्ट 1 घंटा पहले उठ जाते हैं, तो रात को भी लेट तक वो काम करते रहते हैं। उससे और कुछ नहीं हुआ, उनकी बॉडी ने दिखा दिया कि उनके जो दोषास हैं वो इम्बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि रात को लेट सोने से वात दोष बढ़ जाता है बॉडी में, और जब हम सुबह लेट उठते हैं तो कफ दोष बढ़ जाता है, और दोनों ही दोष इम्बैलेंस होने की वजह से उन्हें पीसीओडी की दिक्कत हो गई।
2: पहले समय में अगर हम देखें, कुछ साल पहले अगर हम जाएं, तो शायद बीमारियां भी कम होती थी, क्योंकि जो तरीका रहन सहन का वो आयुर्वेदक के अनुसार ही होता था।
3: बिल्कुल सही।
2: अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य के मायने आपने बता दिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदा होलिस्टिक सिस्टम कहा जाता है, ये पेशेंट को कैसे प्रभावित करता है?
3: जी, आयुर्वेद में बेसिकली पेशेंट को ट्रीट करने के लिए दो तरह के सिस्टम है
2: जी।
3: एक को हम शोधन कहते हैं और एक को शमन कहते हैं। शोधन का मतलब है बॉडी को सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स करना, बॉडी के जितना भी अंदर टॉक्सिन्स है उसको बॉडी से रिलीज करना, जिसको आयुर्वेद में आम कहते हैं
2: जी।
3: तो उसके लिए आयुर्वेद पंचकर्मा थेरेपी अपनाता है। पंचकर्मा थेरेपी, पांच तरह के एक्शंस होते हैं इसमें, पांच तरह के कर्म है जिस कारण इसको पंचकर्म कहा गया है, जिसके थ्रू हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। और इसमें जो पांच कर्म है उसमें वमन, विरेचन, वमन मीन्स वॉमिटिंग, विरेचन मीन्स परगेशन, बस्ती यानी एनीमा, एंड देन रक्त मोक्षण जिसमें ब्लड लेटिंग करते हैं, एंड देन नस्य जिसे कि नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली इन प्रोसेस में क्या होता है कि इससे पहले एक पूर्व कर्म होता है। पूर्व कर्म में आपको स्नेहन और स्वेदन किया जाता है, यानी कि आपको बॉडी को मसाज दी जाती है, स्टीम दी जाती है, ताकि जो चैनल्स हैं उनको ओपन किया जा सके, सर्कुलेशन बढ़ाया जा सके, ताकि जो सेलुलर लेवल पे टॉक्सिन्स पड़े हैं वो रिलीज हो सके। उसके बाद वमन और विरेचन के लिए घी पिलाया जाता है पेशेंट को।
2: अच्छा।
3: वो तब तक पिलाया जाता है तब तक जब तक कि पेशेंट के सारे टॉक्सिन्स उसके स्टमक में ना आ जाए। लाइक उसको जब घी पिलाते हैं तो 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन में, पर्सन के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी विकृति के अनुसार उसका डिसाइड होता है कि वो कितने दिन तक उसको घी पिलाया जाएगा। उसके बाद जब हमें लगता है कि अब पेशेंट रेडी है मेन प्रोसेस के लिए, तब हम उसको फिर नियरेस्ट रूट से निकालते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट की कफ बढ़ी हुई है तो हम उसे वमन के थ्रू बाहर निकालेंगे, और अगर उसकी पित्त बढ़ी हुई है तो उसे विरेचन के थ्रू बाहर निकालेंगे, यानी मोशंस के थ्रू निकालेंगे। और अगर पेशेंट की वात बढ़ी हुई है तो हम उसको एनिमास देते हैं, बस्ती के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। रक्त मोक्षण में बेसिकली जितनी भी स्किन डिजीज आती है उस केस में हम ब्लड लेटिंग करते हैं, जो कि जलोका के थ्रू यानी लीचेस के थ्रू होता है, या फिर हम डायरेक्टली वेन के थ्रू इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल देते हैं। और लास्ट में है नस्य। नस्य में हम नेजल ड्रॉप्स देते हैं, क्योंकि नासा को सिर का द्वार कहा गया है आयुर्वेद में। तो अगर हम नाक से मेडिसिन डालते हैं तो उससे आपके जितने भी सेंस ऑर्गेन्स हैं वो सारे लुब्रिकेट हो जाते हैं, आपके जो ब्रेन में प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी लोब है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी अपर जो पार्ट है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती।
2: आपने जो ये प्रोसेस बता दिए, क्या ये किसी एक्सपर्ट के देखरेख में करने चाहिए या हम घर पे भी कर सकते हैं?
3: आप इसमें से सिर्फ नस्य है जो आप घर पे कर सकते हैं, बाकी सब आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही करने पड़ेंगे, उनकी गाइडेंस में करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डोजेज और हर चीज वो है वो आप नहीं उसको अंदाजा लगा सकते कि कितना घी पीना है और कौन सी मेडिसिन से आपको पिलाई जाएगी तो आप वॉमिट कर पाएंगे। तो ये सब कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड करता है, खासकर अगर वो पंचकर्म जानता है।
2: तो श्रोताओं को हम ये बता देते हैं कि जो आज हम बातचीत कर रहे हैं आयुर्वेदा के बारे में, तो उसके बारे में अगर वो कोई भी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो वो जरूर अपने आयुर्वेदाचार्य उनसे वो बात करें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी वात, पित्त और कफ के बारे में बताया, समादोषा जो है ये क्या शब्द है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं?
3: आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है आपके माइंड, बॉडी और सोल का अलाइनमेंट में रहना
2: जी।
3: और आपके जो दोषास हैं वात, पित्त, कफ, इनका सम रूप में रहना, मतलब कि इनका बैलेंस्ड फॉर्म में रहना। जब ये दोष बैलेंस्ड है तो आप स्वस्थ हैं, जब ये इम्बैलेंस है तो आपको डिजीज है। और कौन सा दोषा इम्बैलेंस है वो ही आपकी डिजीज को डिफाइन करता है, कि अगर आपका वात दोष इम्बैलेंस है तो आपको अलग तरह की डिजीज है, आपका पित्त इम्बैलेंस है तो डिजीज अलग होगी। तो ये तीनों ही दोष जब इम्बैलेंस होते हैं तो डिफरेंट तरह की डिजीज पैदा करते हैं, और हम उसको नाड़ी परीक्षा के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि आपकी कौन सी विकृति है, प्रश्न पूछ के पता करते हैं पेशेंट से कि उसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है कि अगर ज्यादा दोष अगर आपका डिस्टर्ब नहीं है तो हम शमन थेरेपी के थ्रू, यानी कि आपको मेडिसिन दे के ही उसको ठीक कर देते हैं, और थोड़ा सा डाइट और लाइफस्टाइल बताएंगे कि आपने क्या चेंजेस करने हैं, उससे ही आपको फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब डिजीज काफी ज्यादा होती है, क्रॉनिक होती है, तो उस केस में हम डिटॉक्स की सलाह देते हैं। और डिटॉक्स भी हम हर महीने में नहीं कर सकते, डिटॉक्स के कुछ पर्टिकुलर टाइम है, जो ऋतु संधि का टाइम है उसको आयुर्वेद जो है वो डिटॉक्स के लिए बेस्ट मानता है, क्योंकि उस टाइम आपके दोष ऑलरेडी बड़े होते हैं तो उनको निकालना और इजी हो जाता है। तो उस टाइम में हम पेशेंट को डिटॉक्स देते हैं, तो उससे उसके जो सेलुलर लेवल पे जब वो डिटॉक्स हो जाता है, उसके बाद जब हम उसको मेडिसिन देते हैं तो उसका इफेक्ट पेशेंट पे ज्यादा रहता है।
2: आपने अभी पंचकर्मा की बात की है, आप पंचकर्मा विशेषज्ञ हैं, कृपया आप बताएं इसमें हम स्वास्थ्य लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से प्रक्रियाएं पंचकर्मा में है।
3: जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पंचकर्मा पांच तरह के कर्मों से जो है उसको डिफाइन करता है, जिसमें मैंने बताया वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य। तो इसमें से जो वमन और विरेचन है, ये वमन को हम तब करते हैं जब हमारा कफ बड़ा हो, पित्त बढ़ने की टाइम पे हम विरेचन करते हैं, और अगर वात बड़ी हुई है तो हम बस्ती करते हैं, और अगर आपको स्किन डिजीज है या पित्त इम्बैलेंस है उस केस में हम रक्त मोक्षण भी करते हैं, और नस्य हम अपने जो साइनसिस से रिलेटेड इशू है या आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, आईसाइट के इशू है या थ्रोट से रिलेटेड है, थायराइड के इशू है, तो उस केस में हम जो है नस्य करते हैं, या खासकर फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी नस्य का बहुत अच्छा रोल है। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट ठीक किए हैं जो कि हम लोकल एरिया पे तो काम करते हैं, उसके साथ जब हम नस्य को इंक्लूड कर देते हैं तो मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। वन ऑफ माय पेशेंट, उसकी जो गर्दन थी वो बिल्कुल मूव ही नहीं करती थी।
2: अच्छा।
3: और आफ्टर 15 दिन उसने जो थेरेपी ली नस्य की, उसके बाद अब 60-70% इंप्रूवमेंट है उसकी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के केस में, मतलब अच्छे रिजल्ट हैं आयुर्वेद के।
2: जी, जैसे आपने भी फ्रोजन शोल्डर की बात की, तो क्या कोई एक सरल सा टिप आप बता सकते हैं, एक फ्रोजन शोल्डर को हम कैसे रिलीज करें या कैसे उसके दर्द से मुक्त हो सकें?
3: मोस्टली फ्रोजन शोल्डर उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिनको डायबिटीज या उनके ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो।
2: अच्छा।
3: उन केसेस में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, या जो लोग नॉर्मली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो उन बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं करते हैं।
2: जी।
3: तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि उस जगह पे स्नेहन किया जाए गरम तेल लेके, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है जहां भी चीज फ्रीज हुई है या जहां पेन है वहां पे वात दोष बढ़ा हुआ है। वात की नेचर ड्राई और कोल्ड होती है, तो आयुर्वेद ये कहता है कि जब भी आपने किसी चीज को ट्रीट करना है तो उसके ऑपोजिट गुणों पे काम करना पड़ेगा। तो आपको ऑयल यूज करना है जो कि लुब्रिकेटेड होता है, और उसको हॉट करके यूज करना है ताकि उसमें हॉट और लुब्रिकेशन वाली दोनों क्वालिटीज आ जाए। तो उसको आप जब अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करने के बाद आपने वहां पे स्टीम देनी है, या फिर आप वहां पे कुछ गर्म पानी की बॉटल रख सकते हैं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। एंड देन आपने एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करिए, उसको मूव करिए, उसकी मूवमेंट्स करिए, ताकि उस पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और जिन पार्ट्स में ब्लड नहीं पहुंच रहा है वहां तक ब्लड पहुंच जाए और वो पार्ट हील हो सके।
2: डॉक्टर साहब, ये बातचीत हम जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई भी गाना हम आपको भी और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे। कौन सा गाना आप सबसे पहले सुनना चाहेंगे?
3: मैं किशोर कुमार का सॉन्ग है, रुक जाना नहीं रुक जाना नहीं तुम कभी हार के, ये प्लीज आप सुनाएं।

0: डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज के एलोपैथिक ट्रीटमेंट दौर में आम जन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्यों चुने, कौन कौन से प्रोसेस या तरीके हैं स्वस्थ जीवन के लिए, क्या फर्क है इनमें?
1: एक्चुअली आयुर्वेद और एलोपैथिक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो थेरेपीज हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद बेटर है या एलोपैथी बेटर है। जहां पे इमरजेंसी की बात आती है वहां पे एलोपैथी कारगर सिद्ध होती है
0: जी।
1: और जहां पे क्रॉनिक डिजीज की बात आती है वहां पे आयुर्वेद जो है वो काफी हद तक सफल रहा है
0: जी।
1: आयुर्वेद में डिफरेंस ये है कि आयुर्वेद जो है पर्सन के ऊपर काम करता है, डिजीज के ऊपर काम नहीं करता
0: जी।
1: तो एक पर्सन की क्या प्रकृति है, उसकी बॉडी टाइप क्या है और उसका कौन सा दोष बड़ा हुआ है, उसकी विकृति क्या है, मतलब उसको डिजीज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या मेडिसिन देनी है या उसको हमने डिटॉक्स करना है। एक्चुअली आयुर्वेद सब लोगों के लिए डिफरेंट है। तो जो डिजीज है वो उस पर्सन की प्रकृति क्या है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आयुर्वेद में जैसे मैंने पहले बताया आपको कि पांच महाभूत की जो है वो बेस है इसका, जिसकी वजह से वात पित्त और कफ तीन तरह के एनर्जीज बनती है
0: जी।
1: वात दोष जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ कि बेसिकली है क्या। आयुर्वेद में सात तरह की प्रकृति बताई गई है, वात पित्त कफ, वात कफ, पित्त कफ और वात पित्त कफ। ये सात तरह की प्रकृति हैं। इसमें बेसिकली जैसे हम बात करें कि जो वात प्रकृति है वो लोग हैं जो कि बहुत खाने के बाद भी मोटे नहीं होते, अगर बढ़ेगा भी तो उनके टमी एरिया पे फैट बढ़ता है और ये लोग हर चीज बहुत फास्ट करते हैं, दे टॉक फास्ट, वॉक फास्ट, ईट फास्ट, लर्न फास्ट एंड फॉरगेट फास्ट। और पित्त प्रकृति जो लोग हैं उनके साथ क्या रहता है कि वो मॉडरेट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं वो लोग, गुस्सा कुछ ज्यादा रहता है उन लोगों में, डाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है, वो कुछ भी हजम कर सकते हैं, बड़ा मील लेते हैं और उनको इजी डाइजेस्ट हो जाता है और अपनी मर्जी से वो वेट कम और ज्यादा कर सकते हैं। जो कफ प्रकृति लोग हैं वो बेसिकली बॉडी बिल्डर होते हैं, अच्छी बिल्ट होती है और उनको हवा पानी भी लग जाता है, मतलब उन्हें खाने की जरूरत नहीं है, उनका वेट नेचुरली बढ़ जाता है। उनके लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क है कि वेट कैसे रिड्यूस करें
0: जी।
1: तो इस तरह से तीनों प्रकृति जब कॉम्बिनेशन में होती है तो उनके कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे उनके मेंटल और फिजिकल बॉडी में। तो आयुर्वेद ये डिसाइड करता है कि इस पेशेंट की ये प्रकृति है और इसका ये दोष इम्बैलेंस है तो उसके हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट देना है। उसी तरह से उनका लाइफस्टाइल होगा, उसी तरह से उनकी डाइट होगी। जैसे वात प्रकृति है तो वो फास्ट खाता है और उसको हर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है तो उसको दोबारा खाना पड़ता है और उसमें एंड्यूरेंस भी कम होती है तो इसलिए उसको बीच में रेस्ट भी लेना पड़ता है। वहीं जब हम कफ की बात करते हैं तो उसको हम दोपहर को सोने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी एंड्यूरेंस ज्यादा है तो उसका कफ और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस केस में हम उसे थोड़ा मील लेने की सलाह देते हैं। इसी तरह से जो पित्त प्रकृति पर्सन है उसकी डाइजेशन अच्छी होती है इसलिए वो ओवर ईटिंग कर लेता है तो उसको हम कॉन्शियसली ईट करने के लिए कहते हैं कि ताकि वो ओवर ईट ना करे, जिसके कारण उसकी पित्त और एग्रीवेट हो जाती है। तो इस तरह से हम डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हर पर्सन के हिसाब से उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद ये मानता है कि हमारी माइंड, बॉडी और सोल का अलाइनमेंट में होना जरूरी है, इसलिए आयुर्वेद जो है वो अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल और स्लीप इसके चारों ओर ही घूमता है कि आपकी डाइट कैसी हो आपकी प्रकृति के हिसाब से। आप ये देखिए कितना अच्छा होगा अगर आपको पता है आपकी प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से अगर आप डिसाइड करें कि मेरी डाइट और लाइफस्टाइल क्या होगा तो आप बीमारी से भी दूर रहेंगे और आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आयुर्वेद ये कहता है कि सिर्फ बॉडी तब अच्छे से काम करती है जब आपका माइंड स्वस्थ हो, तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आयुर्वेद बहुत ज्यादा जो है ध्यान देता है
0: जी।
1: उसके लिए आयुर्वेद ये कहता है कि आप मेडिटेशन करिए ताकि आपके जो भी 60,000 थॉट जो आप डेली सोच रहे हैं उसको रिलीज करने के लिए परमात्मा ने नेचुरली नींद बनाई है, जिससे हम अगर हम 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं तो वो हमारे थॉट्स रिलीज हो जाते हैं डेली बेसिस पे। लेकिन जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो क्या होता है कि वो अगले दिन के थॉट्स फिर एड ऑन हो जाते हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद मेडिटेशन की सलाह देता है। और अगर हम पंचकर्मा थेरेपी की बात करें तो वो शिरोधारा के लिए रिकमेंड करता है, जिसमें कि पहले ऑरा क्लेंस किया जाता है, उसके बाद जो ब्रह्मरंध्र है हमारे फोरहेड के बीच में वहां पे ऑयल टपकाया जाता है, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिक वेव जो है मैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है एंड पेशेंट स्टार्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। इस तरह से हम जो है स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: अगर हम आयुर्वेदाचार्य से परामर्श लेते हैं तो उसके बाद हम अपने दोष को समझने के बाद अगर हम अपनी जीवन शैली को चेंज करते हैं तो शायद वही एक सही रास्ता होगा, हम अपने आप को स्वस्थ भी रख सकें और हम आगे की जिंदगी और अच्छे से जी सकें।
1: बिल्कुल, जब हम अपने बारे में जान लेते हैं कि हम क्या हैं, हमारी बॉडी टाइप क्या है, हमें कौन सा खाना सूट करेगा, कौन सा लाइफस्टाइल हमें सूट करेगा और क्या हमें नहीं करना है, डाइट और लाइफस्टाइल की चॉइसेस कितनी इजी हो जाती हैं, और हम उस पर स्टिक रहें तो हम लॉन्ग लाइफ भी जीते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं।
0: डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी, अगर आपसे परामर्श लेना हो तो कृपया बताएं, और आपके 20 साल का जो अनुभव है उसमें आपने खासतौर पर किन किन रोगों पर परामर्श दिया है?
1: मेरा बेसिकली अंबाला शहर में निदान हीलिंग आयुर्वेदा के नाम से क्लिनिक है, और मैं अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल कई तरह के पेशेंट जो है मुझसे कंसल्टेशन ले चुके हैं, जिसमें मेनली मैंने थायराइड, एंडोमेट्रोसिस, ओबेसिटी, इवन जिनका वेट गेन नहीं हो रहा वो पेशेंट्स, इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, बैकएक जिनको रहता है, या स्पाइन से रिलेटेड इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या लंबर स्पाइन में दिक्कत है, या किसी को पैरालिसिस है, इस तरह के पेशेंट्स भी मैं हमने ट्रीट किए हैं।
0: तो समय क्या रहता है आपके क्लिनिक का?
1: समय सुबह 9 से 2 और शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक,
0: और रविवार आपका
1: क्लोज रहता है।
0: आपने एंडोमेट्रोसिस की बात की, आप थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं ये क्या है?
1: जी हाँ, एंडोमेट्रोसिस बेसिकली एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ये लाइनिंग अगर यूट्रस के बाहर भी मिलने लगे और वो सेम तरह से एक्ट करे जैसे कि वो अंदर रह के एक्ट करती है, जैसे कि जब फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये शेड कर जाती है और वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है, लेकिन जो ये लेयर अगर ये अंदर जो ऑर्गन्स हैं जो यूट्रस के ऊपर या फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर या फिर अगर यूट्रस के अदर पार्ट्स पे अटैच हो जाए जैसे कि फेलोपियन ट्यूब के ऊपर या फिर हमारी जो ओवरीज है उन पे अटैच हो जाए तो ये भी उसी तरह से ब्लीड करेगी, वैसे ही ग्रो करेगी, बट वहां पे उसके निकलने का कोई स्थान नहीं है। तो क्या होगा, वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, उसको ब्लीडिंग बहुत होती है, फेंट हो जाता है पेशेंट कई बार तो पेन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार फ्लो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है जिसकी वजह से जो ओवरीज है वहां पे वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं या एंडोमेट्रियल सिस्ट बोलते हैं इसे। तो उसके कारण क्या है, पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो जाती है आगे और कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी और पेन बहुत ज्यादा रहता है, फटीग रहेगा उसको सारा दिन।
0: इसके साथ जुड़ा एक प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि ऐसे पोजीशन में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो इस विषय में बात ही नहीं करना चाहते, तो आप उनको क्या कहते हैं?
1: उनको जरूर, हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि हमें जो पीरियड्स के दौरान पेन हो रहा है वो नॉर्मल है, वो सबको होता है तो हमें भी हो रहा है, लेकिन इसको बर्दाश्त करने का कोई भी कारण नहीं है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी लेडी डॉक्टर हैं जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उनसे मिलिए, अपने जो भी टेस्ट हैं जैसे कि इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह MRI के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है ये टिश्यू, तो आप वो पता करिए और जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी है उससे अपना ट्रीटमेंट आइए ताकि आपको इसका जड़ से इलाज हो सके और आप जो ये अननेसेसरी पेन बेयर कर रहे हैं इससे आपको निजात मिल सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और ब्रेक का अब समय आया है तो हम चाहते हैं कि आपके पसंद का कोई और गाना हम श्रोताओं को सुनाएं, और क्योंकि इसके बाद हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे तो उससे पहले ये गाना हम उनको सुनाना चाहते हैं। तो कौन सा गाना आपकी पसंद का है?
1: आप पिया बसंती रे सॉन्ग जो है वो प्लीज मेरे लिए बजाइए।
0: जी श्रोताओं, आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गाना।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। चर्चा हो रही है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शिल्पी शर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब, हम सबको अपने आप से कितना प्यार करना चाहिए, यानी मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ लव की।
1: सेल्फ लव का मतलब है खुद से प्यार करना, यानी अपनी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना
0: जी।
1: अपना ध्यान दूसरों से हटा के खुद पे लगाना
0: जी।
1: आयुर्वेद बात करता है माइंड बॉडी और सोल की अलाइनमेंट की, यानी कि अपनी फिजिकल और मेंटल बॉडी के ऊपर काम करना ताकि हम एक बेटर वर्जन बन सके। तो उसको बनने के लिए एक बहुत सुंदर संस्कृत का वर्ड है स्वार्थी, जिसका मतलब है जिसने स्व के अर्थ को जान लिया है।
0: अच्छा।
1: यानी उसको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बता रही हूं मैं आपको स्वार्थी का मतलब, सेल्फिश जो है वो तो इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब कुछ और है, लेकिन स्वार्थी का मतलब है जिसने स्व के अर्थ को जान लिया है, मतलब जो खुद पे काम कर रहा है, जो खुद को जान रहा है, दैट इज सेल्फ लव। और ये सेल्फ लव जो है हमें बताया नहीं गया, ना हमारे पेरेंट्स ने, ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सेल्फ लव क्या होता है। उन्होंने अपने आप को ओवर एक्सटेंड करना बताया है दूसरों के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब तक आपका कप फिल नहीं होगा तब तक आप उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो पहले आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। जब आप एक बेटर वर्जन बन जाएंगे तभी आप दूसरों के काम आ पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखेंगे। वहां पर चीजें कंडीशनल होंगी, अनकंडीशनल नहीं होंगी। जब आप खुद पे काम करते हैं, आप अपना बेटर वर्जन बनते हैं, तभी आप अनकंडीशनली दूसरों को सर्व कर पाते हैं, क्योंकि जो आपके पास है आप वही तो शेयर करेंगे ना। जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप शेयर क्या करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करें, अपने डिटॉक्स के ऊपर काम करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर लाइफस्टाइल जिए, प्रॉपर डाइट लें, ताकि आप एक बेटर वर्जन बन सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे और अगर हमारा जीने का तरीका स्वस्थ तरीके से अगर हम जिएंगे तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व बन सकेंगे। आखिर में जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की कुछ दवाइयां ना लेने की, जिसमें से मेफ्टाल स्पास भी एक है। क्या अगर हम ये दवाई ना लेते हुए आयुर्वेदा में इसका कोई रिप्लाई हो, आंसर हो, तो वो प्लीज बताएं।
1: मेफ्टाल स्पास बेसिकली पेट दर्द के लिए ली जाती है
0: जी।
1: या तो उसमें बेसिकली आयुर्वेद क्या कहता है कि जहां पे पेन है वहां पे वात बढ़ी हुई है, तो उसके लिए आयुर्वेद ये कहता है कि आप अजवाइन की चाय बना के पी सकते हैं, जिससे आपको पेट दर्द में रिलीफ होगा। इसके अलावा आप पेट पे गर्म तेल की मसाज कर सकते हैं, उसके बाद वहां पे गर्म पानी की बॉटल रख सकते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ फील होगा, क्योंकि वात बढ़ने की वजह से हमें उसके ऑपोजिट करेक्टर की चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज करेंगे तो उससे भी आपको पेट दर्द में आराम हो जाएगा।
0: तो क्या ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है?
1: हाँ जी बिल्कुल, दोनों के लिए है।
0: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, आपसे इजाजत लेने का समय आया है। डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा भी यहाँ पे आए और हमारी श्रोताओं के साथ आप रूबरू हों, उनके समस्याओं का निदान आप करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: मैं श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने आज मुझे सुना। मैं उम्मीद करती हूं कि इस वार्तालाप से आपको कुछ लाभ हुआ होगा, आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, और मैं ये चाहती हूं कि आप इसको फॉलो करें और जीवन में आयुर्वेद को अपनाएं। मैं 90.0 FM का भी धन्यवाद करना चाहती हूं। यहां पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं इस माध्यम के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंच पाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

0: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ की गई बातचीत आप सुन रहे थे। आपकी बातचीत का विषय था आयुर्वेद और उपचार। डॉक्टर शिल्पी शर्मा आयुर्वेदाचार्य के साथ बात कर रहे थे भारत सोपोरी।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। मेरे एक मित्र हैं जो बाराबंकी में रहते हैं और बाराबंकी के सिविल कोर्ट में वो अधिवक्ता हैं, वकील प्रैक्टिस करते हैं। नाम है उनका अनिल यादव, लेकिन उनको लिखने का बहुत शौक है। वो लिखते हैं और मजे की बात यह कि लिखते भी हैं तो ऐसा लिखते हैं कि दिल में उतर जाता है। मैं चाहता हूं आपको उनकी मैं रचना सुनाता हूं। उनकी रचना जिसका शीर्षक है रोटी और दाल, इस रचना के रचनाकार हैं बाराबंकी के अधिवक्ता श्री अनिल यादव। हमारी उम्र हुई 60 पर रिटायर नहीं हुए, इच्छाएं खत्म नहीं हुई, और पैसा कहां से आए? अपने बेटे का घर तो हो गया, अब पोते का घर कैसे बने? सबके पास BMW हो जाए। बात यह कि इच्छाएं तो तब भी पूरी नहीं होंगी, आखिर कितना पैसा हम कमाएंगे? बच्चों को कितने करोड़ का मालिक बनाना चाहते हैं? गाड़ी है, मकान है, शोहरत है, अरे आखिर हमारे खाने की प्लेट में तो 4 रोटी और दाल सब्जी ही रहेगी ना। फिर बच्चे अरबपति बन जाएंगे, सोने के महल में रहेंगे, पर हमें तो 80 वर्ष की उम्र में भी वो प्लास्टिक की प्लेट में रोटी और दाल का ही इंतजार रहेगा। बस यही रोटी दाल ही जीवन का सार है। हमारे पूरे जीवन की कमाई, मेहनत की लड़ाई, अधिक से अधिक पैसा कमाना नहीं, जीवन को जीवन की तरह जीना होना चाहिए। एक किसान जब पूरा दिन हल चलाकर टूटी चारपाई पर 4 रोटी सूखी मिर्च की चटनी के साथ खाता ना, वो चैन से सोता है, उसको दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं होती। और जो चांद की रोशनी होती है ना, वो इसके लिए ट्यूबलाइट होती है। 5-star या 2-ton का AC उसका खुला आसमान होता है। यकीन करें उसे कब सुबह हुई पता ही नहीं चलता। और हम 40,000 का पलंग हो, 20,000 के गद्दे हो, 4,000 की चादर हो, 40,000 का AC हो, रूम में हीटर लगा हो, पूरी आधुनिक सुख सुविधाएं हो, 56 भोग का खाना खाकर भी रात भर करवटें बदलते हैं, 4-4 टेबलेट खा लेते हैं, तब भी सो नहीं पाते। आखिर सुखी कौन है? जाना तो सबने उसी बांस पर है। इसलिए उतनी मेहनत करो जितना आपका परिवार, आपके बच्चे आपसे बढ़िया तरीके से जिंदगी गुजर लें। और जिंदगी गुजारने के बाद में स्वर्ग देने की लालसा में अपना जीवन बलिदान न करें। अब जीवन साथी के साथ कुछ साल चैन की नींद लें, बच्चों के पंख को इतना भी मजबूत ना बनाएं कि वो उन्मुक्त होकर गगर की इतनी ऊंचाइयों पर उड़ जाएं कि नीचे उतरने का रास्ता भी ना मिले उन्हें। जब उम्र के पायदान 85 के ऊपर जाते हैं तो पैसा या खाना ये अच्छा नहीं लगता, बल्कि बच्चों का साथ अच्छा लगता है। और वो तब मिलता है जब हम आपस में ना मेलजोल सामंजस्य बैठा कर रखते हैं। इस जीवन की महत्वाकांक्षा, इच्छाओं और परिवार के प्रति हमारे कर्तव्यों को समझने में एक तरीका मिलता है। हम पूरी जिंदगी धन, शोहरत और संपत्ति के पीछे भागते हैं और अपने बच्चों को इतनी और अधिक समृद्ध और सफल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जीवन का असली सुख केवल बुनियादी चीजों में है, जैसे 2 रोटी दाल और परिवार का साथ। वही कुल मिलाकर संदेश यह है कि अधिक से अधिक धन और विलासिता हमें वह संतोष नहीं दे सकती जो हम एक साधारण और संतुलित जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखिए, किसान की साधारण जीवन शैली और उसकी गहरी नींद इस बात का प्रतीक है कि खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और सादगी से आते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल अधिक पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को सही मायनों में जीना आना चाहिए, अपने परिवार और रिश्तों में संतोष और सुख आना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें साधारण रहना पड़ेगा, दिखावा छोड़ना पड़ेगा, जो चीजें
शरीर को, सोच को, आत्मा को खराब करती हैं, उनको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि दो रोटी और दाल कुल मिलाकर यही तो हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। और इसके साथ प्यार जो आपको अपनों से, अपने परिवार से मिलता है, तो अपने परिवार के साथ जुड़िए, अपनों के साथ जुड़े रहिए, उनके साथ स्नेह कीजिए, उनका सम्मान कीजिए।

0: झुकाना है।
1: तो कैसी लगी आपको ये रचना? हमें हमारे टेलीफोन नंबर 7056413010 पर अवश्य बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। जय हिंद।

रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मेरी तू मेरी हो, रूह मेरी तू मुझ में खो, रूह मैं तेरा आशिक हूँ, रूह मैं तेरा शायर हूँ, तेरे लिए मैं लिखता हूँ, तेरे लिए मैं सोता हूँ और तेरे लिए मैं जगता हूँ, रूह तू मुझ में बहती है, फिर क्यों नहीं कुछ कहती है, खामोशी को अब तू छोड़, दुनिया से अब नाता तोड़, रूह मेरी तू अब कुछ कहे, बहुत हुआ अब मत चुप रहे।

मेरे लिए सब कुछ सहना, रखना मुझको खुद में तुम, रहो तू मेरी ही रहना, रहो तू मुझ में ही बहना। मेरे लिए सब कुछ सहना, रखना मुझको खुद में तुम, रहो मेरी तू मुझको सुन, रहो मेरी तू मुझको गुन। ये जो मेरी जीवा है तेरे लिए ये कातर है, रूह रूह ये करती है, खामोश नहीं ये रहती है, सचमुच बिल्कुल पगली है, रूह रूह की इसकी रट बिल्कुल भी नहीं बदली है। रूह तू इसकी रट को सुन, कुछ मत सोच इसे बस चुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन। ये जो तेरी चाहत है ये दिल में मेरे बसती है, यादों के ये दीपक बनकर आंखों में मेरे जलती है, श्रवणों में तेरा नाम है रूह, नथनों में तेरी खुशबू है, होंठों पर तेरी प्यास है रूह, पौड़ों पर तेरी हस्ती है, इस दीवाने की दुनिया में तेरी ही है बस रुंझुन। रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

ये जो मेरी आंखें हैं हर दम गीली रहती हैं, खामोशी के साए में चुपचाप बहुत कुछ कहती है। तू इनका जिंदा सपना है, तू इनका बिल्कुल अपना है, पलकों पर इनके तू ही है, पानी के घर में तू ही है, पानी के घर में तू ही है, ये तेरी राह ही तकती हैं, ये तेरे लिए ही सजती हैं, ये तेरी याद में रहती हैं और तेरे प्यार में बहती हैं। इनको बस है तेरी धुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छुप डाले, दीपक ये जल जाएगा, हाथ नहीं फिर आएगा, खामोश मोहब्बत सिसकेगी, छाती में तेरे धड़केगी, तू चैन बिल्कुल पाएगी, रोते रोते मर जाएगी, बातें मेरी याद आएंगी, बेचैन तुझे कर जाएंगी, रोता मेरा बेबस चेहरा, रोता मेरा बेबस चेहरा, घाव तुझे देगा गहरा, तड़पेगी तब तू जीवन भर, आहट ना मिलेगी मेरी पल भर, तड़पेगी तब तू जीवन भर, आहट ना मिलेगी मेरी पल भर, चला छोड़ जाऊंगा मैं, चला छोड़ जाऊंगा मैं, नहीं के भी आऊंगा मैं, मत होने दे ऐसी बात, रूह तेरे है सब कुछ।

रूह में तेरा बच्चा हूँ, रूह में बिल्कुल सच्चा हूँ, रूह रची है मुझ में तू, रूह बसी है मुझ में तू, पोरों पर तू ही लिपटी है, रूमों में तू ही पसरी है, बिन तेरे में जल बिन मीन, बिन तेरे में जल बिन मीन, ना मुझसे मेरा जीवन छीन, मुझ चातक की तू है प्यास, तू मेरा जीवन तू मेरी आस, सांस के लिए हवा है जो, मेरे लिए तू है वो, सांस के लिए हवा है जो, मेरे लिए तू है वो, रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छपटा ले, कर ले मुझको खुद में गुम, हो जा मुझ में खुद भी गुम, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

रूह मुझे तू अपना ले, रूह मुझे तू छपटा ले, कर ले मुझको खुद में गुम, हो जा मुझ में खुद भी गुम। रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन, रूह मेरी तू मुझको सुन, रूह मेरी तू मुझको गुन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का।
1: नमस्कार, सुस्वागतम। आप सुन रहे हैं सरगम का नया अंक। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, आपका स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम में। आज के इस बेहतरीन सफर में हम आपको ले चलेंगे पुराने गानों की याद में। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म सहरा के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है रामलाल ने।

लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है रोशन ने और फिल्म ताजमहल से।

लीजिए अब सुनते हैं रवि का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म दो कलिया से, और उसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: अब पेश है फिल्म तलाश का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है SD बर्मन ने।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

0: फिर से तो फरमान।
1: अगले गाने के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म इंतकाम से।

लीजिए अब सुनते हैं जाने अनजाने फिल्म का गाना, गुलशन बावरा का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन और आवाजें दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है रविंदर जैन, राजकवि और इंद्रजीत सिंह का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म चोर मचाए शोर से, जिसको संगीत से सजाया है रविंदर जैन ने।

अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना, जिसके संगीतकार है खयाम और जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने फिल्म कभी कभी से।

अब पेश है फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और अपनी आवाज से सजाया है शैलेंद्र सिंह ने।

लीजिए, यह पेश है किशोर कुमार का गाया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और उसका संगीत दिया है खयाम ने, फिल्म कभी कभी से।

0: नहीं।
1: अगला गाना है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है वर्मा मलिक, फिल्म जानी दुश्मन से।

0: अब आपको सुनाते हैं फिल्म बैरा का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म बैराग से।
1: सारे शहर में आपसा कोई नहीं, कोई नहीं।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसी ऐसी

0: सभी श्रोताओं के नजर आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, जिसे संगीत दिया है रवि ने, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, फिल्म एक महल हो सपनों का। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: एक महल हो

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन था भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति। यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपुरी, लेके आया हूं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2, जहां बात करेंगे दोस्ती के समर्पण की। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों को साझा करना। दोस्त वो है, एकदम वो भी ऐसे ही होता है जैसे हम हैं, और हमें बदलने की कोशिश नहीं करता। सच्चे दोस्त हमारे अनमोल रत्न होते हैं जो हमारे जीवन को चमकाते हैं। एक सच्चा दोस्त हमेशा साथ रहता है, चाहे जिंदगी में कैसी भी मुश्किलें आएं।

दोस्त हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है। जब दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब भी जिंदगी में सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है तो हमारे अनमोल दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और अपने अनुभव साझा कर एक यादगार बनाते हैं जिसको हम जीवन भर संजो के रखते हैं।

ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका दोस्त ना हो, जो दोस्त की अहमियत ना जानता हो। हमारी जिंदगी में ज्यादा दोस्त ना हो पर कम से कम एक दोस्त जरूर होता है, और उनके साथ समय बिताना किसको अच्छा नहीं लगता। खासकर बचपन की दोस्ती तो बहुत गहरी होती है, जिनकी यादें सदा के लिए मन में बस जाती हैं।

ऐसा नहीं कि मित्रता बनावटी नहीं होती, पर जहाँ बनावटी मित्रता की जाती है वो स्वार्थ से भरी होती है। कोई भी संकट आए तो सच्चा मित्र ही उस मुश्किल घड़ी में साथ देता है, सारे कष्टों को दूर करता है। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने अपने एक सुंदर दोहे में कहा है, आगे के मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित आहे गति संभाई, उस कुमित्र परिहे रहनी बलाई। अर्थात जो आपके सामने मीठा मीठा बोलता है और मन में बुराई रखता है, आपका बुरा चाहता है, तथा जिसका मन सांप के चाल सम्मान टेढ़ा है, ऐसे मित्रों को छोड़ देने में ही भलाई है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2 भारत सोपोरी के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, आइए इस चर्चा के साथ करते हैं समापन इस कार्यक्रम का। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है और मानव जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होता है। मित्र सबके लिए निसंदेह रूप से एक आशीर्वाद है जो ऊपर वाला प्रदान करता है। एक सच्चे दोस्त होने से बेहतर कुछ भी नहीं, जिसके साथ आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और कभी भी जरूरत होने पर उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन को अर्थ देता है और हमारी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना देता है। इसी अच्छे विचार के साथ करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। आप अपना फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जल्द और किसी प्रोग्राम में भेंट करेंगे, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

सुन रहे थे कार्यक्रम दोस्ती अनमोल, एपिसोड 2। एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: जो तुमसे मिला।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, छुप

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपने

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए डॉक्टर ललित शर्मा से की गई बातचीत। विषय है अल्सर, कारण और उपचार।
2: डॉक्टर साहब, होम्योपैथी हमने एक नाम सुना है,

0: ये क्या है?
1: सर, होम्योपैथी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है कि जो 100% जो है वो लॉ ऑफ नेचर से जो है वो कोरिलेट करता है
0: जी।
1: तो इसमें क्या है कि पूरी वर्ल्ड ओवर ये फेमस है और मोस्ट प्रेवलेंट है, और इसकी एडवांटेजेस जो हैं वो 100% पॉजिटिव हैं। ये जैसे कि बाकी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं उसमें अभी लेटेस्ट कई रिसर्चेस आ रही है कि किसी न किसी के साइड इफेक्ट्स हैं, और होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उसके पीछे ये राज है होम्योपैथी के पीछे कि क्यों साइड इफेक्ट्स नहीं है, कि जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स जो हैं मेडिसिन के डेरिवेटिव्स हैं जिससे ओरिजिन हम मेडिसिन करते हैं, तो उसके जो उसकी हम इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम प्रिजर्व करते हैं, और उसकी पोटेंशियल जो पोटेंसी जो होती हैं उन्हीं को प्रिजर्व करते हैं। जो इनिशियल क्रूड फॉर्म होती है जो सब्सटेंस की वो उसमें बिल्कुल नहीं रहती, और उस जो साइड इफेक्ट्स जितने भी पैदा होते हैं किसी भी दवाई के वो क्रूड फॉर्म से ही होते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, आम भाषा में हम अपने सुनने वालों को समझाना चाहेंगे।
1: हाँ जी।
0: कि ये जो दवाइयां हैं,
1: हाँ जी,
0: ये आप कहाँ से बनाते हैं?
1: हाँ जी।
0: किन से बनती हैं ये दवाइयां?
1: हाँ जी सर, इसके लिए होम्योपैथी में ऐसा है कि दवाइयां जो हैं इसके लिए हर माध्यम है दवाई बनाने का, उसमें जो हमारी जड़ी बूटियाँ भी आ जाती हैं, हमारे केमिकल्स भी आते हैं, हमारे कुछ ऐसी डिजीज़ जो होती हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है किसी पेशेंट्स को, जैसे स्नेक्स विनोम है, स्नेक्स सांप का जहर है
0: जी जी,
1: तो इस तरह से किसी किस्म की भी हम सिक्स कैटेगरीज को डिवाइड किया हुआ है, तो लेबोरेट नहीं करेंगे हम शार्टली चलेंगे कि उस कैटेगरीज में हमें उसको हम लेते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल सब्सटेंस को इतना पोटेंशियलाइज कर देते हैं कि वो जो सब्सटेंस होता है उसको इनहेरेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको हम प्रिजर्व करते हैं, और प्रिजर्व उस हिसाब से करते हैं कि जो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और जो मेडिसिन तैयार होती है उसमें वो जब पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जब पेशेंट लेता है उसके मेडिसिन को, तो वो उससे साइड इफेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और जो मेडिसिन हमने दी होती है एक तो उसकी उससे हीलिंग होती है, उस डिजीज़ की हीलिंग होती है जिस बीमारी के लिए हमने उसको दी है, दूसरा जो है वो जो हमने जो मेडिसिन दी होती है वो टोटली अब सिम्टम्स के ऊपर रहती है, और उसी टोटली अब सिम्टम्स के ऊपर उसकी एक इम्यूनिटी भी डिवेलप होती है, ताकि आगे एक बार पेशेंट को हमने ठीक कर दिया तो आगे जाके उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि दोबारा वो बीमारी उसको दोबारा अटैक ना करे।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं ये एक तो जड़ी बूटियों से आप हासिल करते हैं,
1: हाँ जी,
0: या पेड़ पौधों से हासिल करते,
1: हाँ जी,
0: हैं,
1: हाँ जी,
0: और दूसरा ये भी है कि केमिकल्स भी, हाँ, इस्तेमाल में लाए जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये आपकी जो दवाइयां हैं इस्तेमाल में लाई जाती
1: हैं? होम्योपैथी इतना वास्ट साइंस है कि डॉक्टर हैनमैन ने जो उसके फाउंडर थे उन्होंने इसको इस तरह से उन्होंने मेडिसिन को डिराइव किया कि हम हर बीमारी को इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं रहती कि होम्योपैथी उससे जो है वो वंचित है, और इस हिसाब से किया है कि उसकी एडवांटेजेस ये हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, और दूसरा जो मेडिसिन हम देते हैं वो डिजीज़ को इरेडिकेट करती है, और रेडिकेट करने के बाद उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा करती है, लेकिन होम्योपैथी की एक ऐसी साइंस है जिसमें कि डिजीज़ को हम बीमारी को हम पूरी तरह से शरीर से
0: यानी जड़ से
1: उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है होम्योपैथी की दवाई,
0: बीमारी के रूट्स पकड़ने
1: रूट पकड़ के बाहर निकालती
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: और पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, दोबारा वो बीमारी अटैक नहीं करेगी।
0: इलाज का तरीका क्या होता है?
1: इलाज का ऐसा तरीका होता है कि हम सबसे पहले पेशेंट को पूरा लेते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी डिजीज़ कोई भी डिजीज़ हो पे उसकी इन्वेस्टिगेशन भी लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम टोटली अब सिम्टम्स भी लेते हैं कि पेशेंट को अंदर पूरी सिम्टम्स क्या हैं पूरी, और सिम्टम लेने के बाद हम जैसे बाकी पैथी में क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है, तो होम्योपैथी में डायग्नोसिस जो वो सेम होती है, जैसे एक निमोनिया का एक मरीज़ है 10 मरीज निमोनिया के हैं, बाकी पैथी में क्या होता है कि निमोनिया के मरीज को एक ही दवाई फिक्स होती है कि ये दवाई दी जाती है
0: जी, जी।
1: लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में ऐसा है कि अगर 10 मरीज होम्योपैथी के हैं लेकिन हम उनकी पार्टिकुलर सिम्टम्स देते हैं, पार्ट के एक निमोनिया का पेशेंट जो है वो दूसरे निमोनिया से पेशेंट कैसे डिफर करता है, कौन सी ऐसी पेकुलरिटी है इसके अंदर, और उसी आधार के ऊपर हम वो निमोनिया के पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद हो सकता है कि 10 न्यूमोनिया के पेशेंट को 10 अलग अलग दवाइयां दी जाएं,
0: जी
1: क्योंकि हर पेशेंट की अलग अलग इम्यूनिटी हो सकती है, जिसको हम नाम देते हैं इंडिविजुअलाइजेशन का। और होम्योपैथी में ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जिसको हम डायग्नोज करने के बाद पेशेंट को इंडिविजुअलाइज कर देते हैं।
0: आजकल जो हम आम बीमारियां देखते हैं, जैसे जो शुगर की बीमारी है,
1: हाँ जी,
0: या इसी तरह से ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना,
1: हाँ जी,
0: इस तरह की बीमारी है, मोटापा है,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: क्या ये इस तरह की बीमारियों का इलाज?
1: के डायबिटीज की कोई बीमारी लेते हैं, जब मोटापा है, जब ब्लड प्रेशर है, उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं कि ये बाकी डायबिटिक पेशेंट से, बाकी ब्लड प्रेशर पेशेंट से कैसे डिफरेंट करता है, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन लेते हैं। जहाँ पे पैथोलॉजिकल ग्राउंड पे रिमूव करना हो हम उसको लेते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे करना हो उस पर वहाँ पे लेते हैं।
0: यानी
1: एक बार हमने ब्लड प्रेशर को ठीक कर दिया होम्योपैथी में, उसका दोबारा ब्लड प्रेशर नहीं रेज होगा, बाकी पैथीज में ऐसा नहीं होता है। ये मेरा चैलेंज है इसमें।
0: यानी दवाइयों से ही आप इसको कंट्रोल में लाते हैं?
1: बिल्कुल, दवाइयों से कंट्रोल लाते
0: हैं। तो सक्सेस रेट क्या है?
1: सक्सेस रेट मेरी जो प्रैक्टिस 15 इयर्स की प्रैक्टिस कठुआ में है, और एज ए स्टूडेंट जब मैं चंडीगढ़ में था तो वहाँ पे मैं ड्यूरिंग स्टूडेंट ही मैंने प्रैक्टिस करता था, वो भी सक्सेस रेट मेरा जो है वो 95% से अबव रहा है। क्योंकि मैंने रूट काज से कोई ब्लड प्रेशर गया है, मैंने देखा है कि कई सारे पेशेंट्स अदर पैथीज में जब जाते हैं तो उनको डॉक्टर बोल देते हैं कि जी जी पूरी उम्र के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई खाना पड़ेगी, लेकिन मैंने जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के ठीक किए हुए हैं उनको आज तक कई बार नहीं हुआ। जैसे यूरिक एसिड का है, गंठिए की प्रॉब्लम है,
0: जी जी,
1: तो लोग जो पूरी उम्र के लिए गंठिए की दवाई खाते रहते हैं। तो हमने जो पेशेंट ठीक किए हैं उनको 5 साल बाद भी हमने यूरिक एसिड टेस्ट करवा के देखा, उनका रिपोर्ट वही सेम आई। तो कारण वही है कि हम जो है बीमारी को जड़ से उखाड़ते हैं, और जड़ से उखाड़ने का कारण ये होता है कि बीमारी को हम जो है वो तय तक जाते हैं, और उसी आधार के ऊपर, नेचर लॉ के ऊपर जो है वो होम्योपैथी प्रसारी जो है वो बेस्ड है।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ हम अपनी बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। आपकी पसंद का कोई गाना,
1: हाँ जी,
0: आप सुनवाना चाहेंगे अपने?
1: हाँ, मैं अपने सुनने वालों को ये एक गाइड फिल्म का गाना है जो लता ने गाया है, कांटों से
0: खींच के आंचल, देवानंद साहब हाँ की फिल्म,
1: हाँ
0: रही है,
1: हाँ,
0: और वहीदा रहमान पर ये गाना पिक्चराइज किया गया है।

0: डॉक्टर ललित शर्मा हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, बीमारियों का जिक्र हो रहा है, अल्सर एक बीमारी है।
1: हाँ जी,
0: ये क्या है?
1: हाँ सर, अल्सर आपने बहुत अच्छी बीमारी चुनी है आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। मैंने देखा कि मैं कठुआ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कठुआ का मुझे लगता है कि 99% लोग जो हैं वो सारे इसी बीमारी से जो पीड़ित हैं। तो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से अपने सुनने वालों को डिटेल में बताऊंगा
0: जी
1: कि मैं जहाँ का जहाँ पानी ख़राब है या कैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्सर एक ऐसी चीज़ है कि इसको हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ बोलते हैं। तो ये अल्सर में अल्सर एक एडवांस स्टेज होती है जब गैस्ट्रिक मुकोजा की स्वेलिंग होती है, गैस्ट्रिक स्टोमक में हमारी स्वेलिंग होती है। अगर उस स्टेज पे हम इसको कंट्रोल ना करें तो अल्सर जो है कि म्यूकोजा में क्या होता है कि उसकी एक ब्रीच आ जाती है। ब्रीच मतलब कि उसको टूट जाता है बीच में, और टूटने से एक जख्म सा बन जाता है। तो वो जख्म बनने से वो अल्सर की फॉर्म ले लेता है, और अल्सर वहीं पर बनता
0: इसके है। सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है? एक आम इंसान को कैसे पता चलता है कि मैं इस बीमारी से पीड़ित हूँ?
1: अल्सर वाले पेशेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि उसको ये हमारा जिसको हम एपिगेस्टिक रीजन बोलते हैं, जो पेट में नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे दर्द रहती है उसको, और अल्सर दर्द जो है वो उसको छोड़ती नहीं है। जो भी खाएगा उसको हजम नहीं होगा, और खाने के बाद भी हजम अगर थोड़ा बहुत हो भी गया, डे बाय डे में क्या होगा कि उसकी हालत जो है वो कमज़ोर होती जाएगी। अगर उसका वेट करके देखें 3 महीने के बाद देखें तो और 2 किलो कम होगा, 6 महीने के बाद देखें 3 किलो कम होगा, 1 साल बाद देखें तो और कम होगा। अच्छा, अगर उस पर उसी मरीज़ को अगर अल्सर भी है तो उसमें क्या होता है कि उसको ब्लीडिंग भी कभी कभी होती होगी
0: जी जी।
1: अगर अल्सर होगा, अगर उसको सिर्फ हम जिसको गैस ही बोलते हैं, गैस ही होगी जिसको एसिड पेप्टिक डिजीज बोलते हैं, तो फिर उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है।
0: आम शिकायत जब रहती है हमारे इस एरिया में या कहीं भी बात करें तो गैस की,
1: हाँ लोग उसका नाम गैस ही दे देते
0: जी जी।
1: हैं।
0: तो ये क्या है गैस, वो इसी से रिलेटेड है?
1: हाँ बिल्कुल इसी से रिलेटेड है जी, क्योंकि वो स्वेलिंग सबसे पहले, मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे पहले स्टोमक में स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग को अगर हम कंट्रोल ना करें तो वो अल्सर की फॉर्मेशन ले लेती है। और स्वेलिंग क्यों होती है, हमारा जो पैनक्रेटिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, इनकी जो है वो बढ़ जाना जो है वो स्टोमक में वो ही इसको क्रिएट करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, ये कितने टाइप का अल्सर होता है?
1: हाँ, अल्सर की एरिया के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। मेन तो हम पेप्टिक अल्सर ही बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर के एरिया जो हैं वो अलग अलग हैं। इसमें इसोफेगस भी आता है और स्टोमक भी आता है और हमारे ड्यूडनम भी आती है, जो मेनली जो इन्वॉल्व एरिया होते हैं, और रेयरली जो होते हैं वो जेजुनम एक पार्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन का, उसमें होता है, उसको माइकल्स डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, वो भी कई बार इन्वॉल्व होता है। और अल्सर में जो रेशियो जो हमारी मेल और फीमेल की बताई गई है, और मेल की जो रेशियो है वो 3 है और फीमेल जो है वो 1:1 है।
0: ऐसा क्यों?
1: मेज में ज़्यादा होता है
0: जी, ऐसा
1: क्योंकि
0: क्यों?
1: ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो अल्सर की जो फॉर्मेशन हमारी शरीर में है वो टोटली रिलेटेड है हमारी थॉट्स के ऊपर। जैसे जो ये अल्सर जो है वो जी ज़्यादा उन लोगों को होता है जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है,
0: टेंशन वगैरह
1: होते हैं। ये तो हमारा एक काज हो गया। दूसरा सिस्टेमिक डिजीजेज होते हैं, सिस्टम डिजीज बॉडी में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इस तरह के पेशेंट हैं। फिर कुछ दूसरे काजेज हैं, जैसे कि कोई पेशेंट जो है वो एनाल्जेसिक ड्रग्स लेते हैं, पेन किलर ड्रग्स लेते हैं, या एस्पिरिन हो गया अपने,
0: या अल्कोहल का इस्तेमाल,
1: अल्कोहल है, ये चीज़ें हैं, और स्मोकिंग है, इन चीज़ों से अल्सर की फॉर्मेशन जाता है। और ये देखा गया है कि पेप्टिक अल्सर जो है वो नॉन स्मोकर में बहुत कम पाया गया है, जो स्मोकर्स में थोड़ा ज़्यादा पाया गया है। अल्कोहल तो मेन काज है ही इसका।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए अल्सर के स्टेज होते हैं?
1: इनिशियल स्टेज में सर अल्सर की ये होता है कि सिर्फ पेशेंट को पेन ही फील होती है, और पेन के वो इतना लाइट नहीं लेता, वो कहता है कि ऐसे कोई छोटी मोटी टेबलेट गैस।
0: ये कहाँ पे पेन होती है?
1: जो स्टोमक के रीजन में पेन होती है,
0: जो नाभि
1: नाभि के जस्ट 2 इंच ऊपर हम चले जाएं तो उसको एपिगेस्टिक रीजन बोलते हैं, तो वहाँ पे पेन होती है पेशेंट को। और पेशेंट ऐसे लापरवाही बरतता है, या अगर वो गलत चीज़ इस्तेमाल कर रहा हो, बाहर की चीज़ें कोई इस्तेमाल कर, अल्कोहल वगैरह, तो वो उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन वो स्वेलिंग जो है वो बढ़ती रहती है। वो उसकी नेक्स्ट स्टेज जो आती है पेन के साथ एसोसिएट हो जाता है, उसकी भूख भी कम हो जाना, बंद हो जाना, और बंद होने से फिर उसके नेक्स्ट सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज है, वो सेकंड स्टेज में ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम कम आती है उसको, थर्ड स्टेज में ब्लीडिंग जो है वो भर जाती है, पेन तो होती रहती है, पेन तो छोड़ती नहीं उसको। अच्छा, अगर अल्सर के अल्सर में अगर वो जो पेप्टिक अल्सर की हम बात कर रहे हैं, अगर अल्सर जो स्टोमक में हो तो पेशेंट की ये सिम्टम्स होती हैं कि वो खाना खाने से उसको रिलीफ मिलता है थोड़ा,
0: जी
1: ठीक है। अगर वो ड्यूडनल में अल्सर हो, ड्यूडनल अल्सर हो, ड्यूडनल अल्सर जो है उसकी हमने एज भी क्लासीफाई की हुई है, 45 ईयर्स के अब होता है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं जिसको हम पेप्टिक अल्सर भी आते हैं, ये गैस्ट्रिक ये स्टोमक में होता है, तो स्टोमक के अगले हिस्से में भी होता है पीछे भी, जिसको हम एंट्रम और पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, कहीं भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि ड्यूडनम वाले ड्यूडनल अल्सर में क्या होता है कि पेशेंट जब खाना खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद पेन होती है, और लीव जो है वो 2-3 घंटे के बाद उसको मिलना शुरू हो जाता है, जब खाना थोड़ा हजम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लीडिंग जो है अल्सर वाले पेशेंट को छोड़ती नहीं है, तो ब्लीडिंग होने से जिसको हिमेटाइसिस बोलते हैं, ब्लीडिंग होने से पेशेंट को एनीमिया भी हो जाता है उससे,
0: बिल्कुल, जब
1: तो पेशेंट एनीमिक हो जाता है,
0: यानी ब्लड लॉस
1: ब्लड
0: होने।
1: लॉस भी
0: जी
1: होता है
0: जी
1: अल्सर वाले पेशेंट में।
0: डॉक्टर साहब, हम अगले हिस्से में ज़रूर बात करेंगे इलाज और परहेज के बारे में, लेकिन आपकी पसंद का एक और गीत हम सुनना चाहेंगे।
1: ये पाकीज़ा फिल्म का जो अपना मौसम है आशिकाना।
0: जी, मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया गया है ये
1: हाँ
0: गाना,
1: जी, हाँ जी, हाँ
0: बहुत ही
1: जी,
0: प्यारा खूबसूरत गीत है।

0: दोस्तों डॉक्टर ललित शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आए हैं, इलाज के बारे में जानना चाहेंगे।
1: हाँ, और जैसे कि हम अल्सर के बात कर रहे हैं, इसके इलाज में हम क्या करेंगे कि सभी पेशेंट्स को अल्सर हैं, 10 पेशेंट को अल्सर हैं, लेकिन बाकी पैथीज में क्या है, जितनी भी हमारी बाकी पैथीज हैं
0: एक ही तरह की ट्रीटमेंट होता है,
1: ट्रीटमेंट
0: दवाई
1: एक ही किस्म का
0: जी
1: होता
0: जी
1: है।
0: यहाँ पे आप
1: हम क्या करते हैं कि पेशेंट के डायग्नोज हो गया कि पेशेंट को अल्सर है, हम फिर अलग अलग मरीजों को अलग अलग दवाई उसकी सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं कि एक मरीज जो है वो दूसरे मरीज से कैसे डिफर कर रहा है।
0: अच्छा, यहाँ पे अल्सर की जब हम बात करें
1: हाँ जी,
0: तो इलाज के बारे में किस तरह के इन्वेस्टिगेशन होता है?
1: हाँ, इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात आती है,
0: जब
1: इसको अल्सर को हम डायग्नोज करते
0: पैथोलॉजी
1: हैं
0: की बात करें
1: एंडोस्कोपी से करते हैं।
0: जी,
1: अगर एंडोस्कोपी में वो सारा क्लियर आ जाता है, अगर एंडोस्कोपी में क्लियर हो जाता है, तो फिर हमें कई बार डर रहता है कि पेशेंट को मैलिग्नेंट तो नहीं है। एक बिनाइन होता है अल्सर, एक मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट
0: जो
1: जिसको हम
0: कैंसर
1: कैंसर
0: की
1: कैंसर को
0: फॉर्म
1: क्लियर
0: कहते
1: कट
0: हैं
1: होता है, बिनाइन को हम कैंसर नहीं कहते।
0: जी।
1: तो एंडोस्कोपी, अगर वो उसको मैलिग्नेंट हो, जैसे कैंसर की स्टेज हो, तो उसकी हम बायोप्सी भी करना पड़ती है, वो एंडोस्कोपी से होता है। तो अगर ऐसा डाउट नहीं है हमें, जैसे कि गैस्ट्राइटिस ही है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ही है जिसको हम अल्सर नहीं कहेंगे, तो उसके लिए हम बैरियम इलिएक टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं।
0: जी,
1: एक्सरे में भी इसके क्लियर हो जाता है।
0: पिलाते हैं कुछ
1: हाँ,
0: बैरियम की बात
1: बैरियम
0: जब
1: मील में
0: करें
1: पिलाते हैं, उसमें
0: जी,
1: वो कैप्स ही होती हैं,
0: उसके
1: कैप्स ही
0: बाद
1: हमें पता चल जाता
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: लेकिन एंडोस्कोपी से हमें जो अल्सर की वो क्लियर फॉर्मेशन पता चल जाता है कि ब्रीचेस जो हैं वो बड़े हुए हैं, अब जो जख्म जो बड़े हुए हैं।
0: तो इलाज
1: इलाज के लिए हम अल्सर के लिए, एक तो हम हमारी होम्योपैथी में क्या है कि हम एक्साइटिंग काजेज और मेंटेनिंग काजेज जो है वो सबसे पहले, ऑब्स्टेकल्स जो हमारी इलाज में है वो रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। कि पेशेंट को हम दवाई देते रहे, एंटासिड्स वगैरह या एलोपैथी में देते हैं, एंटासिड्स देते रहें और उसको एक्साइटिंग काज या ऑब्स्टेकल्स जो है वो रिमूव ना करें। मेडिसिन तो हम आपकी सेलेक्ट करेंगे सही, जो इसके आपको पूरा फायदा होगा, परमानेंट आपका इलाज भी होगा, लेकिन आपको जो एक्साइटिंग काज डिजीज के, जो पार्टिकुलर डिजीज के जो एक्साइटिंग काजेज हैं, उनको 100% रिमूव करना पड़ेगा। एक्साइटिंग, मेंटेनिंग और ऑब्स्टेकल्स जितने हमारे आ रही हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे हम एक एग्जांपल अल्सर की ले लेते हैं, तो उसमें एक्साइटिंग काजेज ये होते हैं कि पेशेंट अगर अल्कोहल ले रहा है वो बंद करे, रिच फूड्स ले रहा है वो बंद करे, मिर्च मसाला ले रहा है वो बंद करे, फैट्स जो है वो बंद करे, क्योंकि इनडाइजेस्टिबल जो डिलेड डाइजेशन चीज़ें होती हैं जो डाइजेशन को डिले करती हैं, वो चीज़ें ना ले, लाइट चीज़ें हैं, बॉयल्ड चीज़ें हैं वो प्रेफर करे, ताकि हमारे जो है वो स्टॉमक को लोड ना ज़्यादा पड़े डाइजेस्ट करने में। और सेकंडली जो है वो मेडिसिन हम उसको उस समय प्रेस्क्राइब करते हैं, अगर पेशेंट हमारा सपोर्ट करता है, उसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि लंबा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पेशेंट जो है वो डे बाई डे इम्प्रूव करेगा। और इलाज में फिर मेडिसिन जिस हिसाब से सेलेक्ट होगी, वो सारे उसमें अलग अलग मेडिसिन हैं और मेडिसिन भी वो डिफरेंट करती हैं, जैसे कि अल्सर के केस में 10 पेशेंट हैं तो हम डिफर करते हैं कि ग्रेफाइट्स हमने प्रेस्क्राइब की, नाइट्रिक एसिड हमने प्रेस्क्राइब की है, जो मेडिसिन के नाम हैं कुछ, म्यूरेटिक हमने
0: यानी
1: सेट,
0: प्रायोरिटी आप परहेज को देते हैं
1: प्रायोरिटी परहेज को देते हैं, परहेज के ऊपर ही मेडिसिन आधारित होती है,
0: यानी
1: क्योंकि
0: आपने
1: हमने एक अल्सर के पेशेंट को दूसरे पेशेंट को डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो अगर डिफ्रेंशिएट किया तो वो डिफ्रेंशिएट इसी वजह से हुआ कि वो उसका इलाज हम अच्छी तरीके से कर सकें। इसमें दोनों मेडिसिन क्यों डिफर कर रही हैं, क्योंकि दोनों पेशेंट, एक को अल्कोहल नहीं ले रहा है उसके
0: बिल्कुल
1: बावजूद भी
0: बिल्कुल
1: उसको अल्सर हो
0: सही
1: गया,
0: सही
1: क्यों
0: कहा
1: हुआ।
0: जी जी
1: अब लेडीज को भी पेप्टिक अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, लेकिन लेडीज हमारे इंडिया में इतनी लेती नहीं है अल्कोहल, लेकिन उनको भी हो रहा है। उसके सेकंडली, जैसे कि अल्सर की हम एग्जांपल ले, कि अगर पेशेंट जो है वो जनरल, एक टर्म है, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो सुबह उठ के पानी पी लेते हैं, अल्सर वाला पेशेंट जो अगर सुबह उठ के पानी पी लेगा तो उसके जितने भी असर हैं वो डिल्यूट हो जाएंगे, वो खाना हजम करने में उसको डिले करेंगे। तो अगर सबसे पहले वो नाश्ता ही करे तो वो एक उसके एसिड्स कंज्यूम हो जाएंगे, एसिड कंज्यूम होने से उसकी जो है वो,
0: यानी खुद ही लोग पानी पी लेते हैं सुबह, ऐसा भी नहीं करना चाहिए
1: ऐसा नहीं करना चाहिए जिन
0: जी,
1: लोगों को जे
0: इस
1: स्टोमक
0: तरह
1: स्वेलिंग होती है,
0: जी।
1: स्टोमक स्वेलिंग से ही जैसे बताया कि वो अल्सर की फॉर्मेशन लेटर ऑन वो कर सकते
0: अच्छा
1: हैं।
0: डॉक्टर ललित, ये बताइए क्या सक्सेस रेट रहा है, अगर इस तरह अल्सर का पेशेंट आपके पास आता है तो? अभी तक आपका एक बहुत खासा तजुर्बा है,
1: हाँ
0: 15 साल का,
1: हाँ जी
0: क्या देखा आपने?
1: हाँ सर, ये अल्सर का जो पेशेंट होता है ना, ये अल्सर एक लास्ट स्टेज होती है, जो गैस्ट्रिक के पेशेंट होते हैं ये लास्ट स्टेज में ही अल्सर बनता है, जिसको हम बोलते हैं कि जख्म हो गया पेशेंट को, तो इसका इलाज करने में थोड़ा समय लग जाता है।
0: यानी हम मान के
1: और
0: चलें
1: सक्सेस
0: कि
1: रेट मेरा जो रहा है वो 95% से अबव रहा है अल्सर के केस में भी।
0: गैस्ट्रिक पेशेंट जितने भी हैं वो ठीक हो सकते हैं अगर
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: होम्योपैथी के जरिए वो
1: होम्योपैथी
0: इलाज करवाना
1: बिल्कुल
0: चाहें।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: डॉक्टर ललित, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपनी पसंद का एक और गीत हमें बताइए जो अपने सुनने वालों तक आप पहुंचाना चाहेंगे।
1: ये जहर फिल्म का गाना है, मैं ये यानी अगर कोई मिल जाए
0: जी, जहर फिल्म से गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ललित शर्मा से की गई बातचीत। विषय था अल्सर, कारण और उपचार। इनसे बातचीत कर रहे थे रमेश मरहट्टा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: होगा मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: राम, अगर हम तुम्हें 5,00,000 रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
4: नहीं, कभी नहीं।
3: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1,00,000 तोला सोना दें तो वापस जाओगे?
4: अयो नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
3: राम, यहाँ। कुछ पियोगे?
4: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
3: नहीं, सोमरस।
4: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे, दारू की बात कर रही क्या? किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की या स्कॉच की?
3: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत हो जाओगे।
4: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली। जल्दी पिलाओ महाराज।

0: numero che ha calato coco con la chiedetta. Maharaj.
1: Bollo.
0: E papi ha da che Maharaj mero.
1: Puccio.
0: Voi amare nicce, ye pine glie che permit hai, che permit nahi hai. यहाँ का क्या हिसाब किताब है?
1: मगर यहाँ कोई रोकथाम नहीं, ये देवलोक है, यहाँ जी भर के सोमरस पियो, जी भर के सोमरस पियो।
0: एक दूसरी बात भी याद आ गई महाराज।
1: बोलो।
0: इधर आओ। मैं शराब पीने से पहले ही आपको बोल देता हूँ, बाद में आप ये नहीं बोलना कि मैं नशे में बोल रहा
1: हूँ। अच्छा,
0: एक पोटी थी।
1: पोटी?
0: हाँ, मेरा मतलब एक छोकरी थी।
1: अच्छा,
0: उसका नाम था चुनिया।
1: सुनिया
0: हो, आजकल के जमाने की वो छोकरी थी, उन्हें प्यार मेरे से करती थी, मेरे कंधे पे से किसी दूसरे को देखती थी और उसके दिमाग में कोई तीसरा रहता था, इसलिए उन्हें जल्दी मर गई। अगर आप मेरे को चुनिया से मिला दिए तो मैं बगैर किसी तकलीफ के किसकी भी बॉडी में बोलो घुस जाऊंगा।
1: शाबाश, तो फिर घुस जाओ उन बादलों के झुंड में जहां चुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ
2: चुनिया। अरे किधर है रे?

की घास ले।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं वितस्ता गीतमाला आरजे नरेश शर्मा के साथ।

दस्ता गीतमाला और मैं हूं आपका रेडियो हमसफर नरेश शर्मा। नमस्कार। तो आइए लेकर चलता हूं आपको संगीत की उस दुनिया में जहां दिल की बात दिल ही कहता है, दिल ही सुनता है और दिल ही मानता है। एक मुट्ठी नींद, चंद टुकड़े ख्वाब, वहीं सिरहाने में बैठी हुई यादों की कुछ भीनी सी खुशबू, कुछ अधूरे कुछ उलझे सवालात, कुछ सहमे कुछ बिखरे ख्यालात, सीने में सांसों के गुच्छे, उलझे हुए से जिस्म की कैद में, शहर के इंतजार तक करवट बदलती रूह, 400 पसरे हुए सन्नाटे की चीखें, ना कोई साया ना कोई आहट।

और दोस्तों, कई बार कुछ ऐसे भी जख्म होते हैं जिनको देने के लिए किसी पराए की जरूरत नहीं होती, हमारे अपने ही काफी होते हैं वो जख्म देने के लिए। दोस्त नाम की जो नकाब ओढ़कर अपने अंदर कुछ और ही ख्यालात लेकर आते हैं, वो ही हमें कुछ अलग जख्म दे जाते हैं।

दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा। मैं बेचैन था, रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियां आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह।

दरखत होता तो कब का टूट गया होता। मैं था नाजुक डाली सबके आगे झुकता रहा। बदले यहां लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से। रंग मेरा भी निखरा पर मैं मेहंदी की तरह पिसता रहा।

काश वो गुजरा हुआ है वो जमाना मिले, कोई मिलने का तुमसे बहाना मिले। नींद भी अपनी लेके चले आए हैं, तेरी पलकों में इनको भी तो सिराहना मिले। शमा महफिल में जलती रही रात भर, काश इसको भी कोई दीवाना मिले। क्या बताओगे जहां को अगर तेरे लबों पे मेरा तराना मिले। सांस से सांस टकराई दोनों जहां, चाहतों का वो मंजर सुहाना मिले। लड़खड़ाने लगी सांसें संदल की भी, अब आप मिल जाओ फिर चाहे ना मुझको जमाना मिले।

यार ने पलकें झुका के जब इशारा कर दिया, मैं कदे की कैद से हमने किनारा कर दिया। एक तुम्हारा देखना हमको अलग अंदाज से, लो हमेशा के लिए हमको तुम्हारा कर दिया। ये मेहरबानी, मोहब्बत और ये जिंदा दिली फर्श से हमको उठा के एक सितारा कर दिया। क्या कहें कि मुफलिसी में जी रहे थे किस कदर, चंद यादों ने ही जीने का सहारा कर दिया।

रूह तेरा जिस्म है, एक जेल खाने की तरह सांस भी लेते हैं हम, रिश्ते निभाने की तरह कुछ नहीं बाकी जहन में, खाके उल्फत है फकत, याद भी करते हैं उनको एक फसाने की तरह।

झूठ से बचना चाहा, उसका बदला मिला, उलट छुरी हम चले। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे काबू हुई जो ये सजा।

न पूछो किस कदर दिल पर हमारे घात करती हैं ये जुल्फें, जब भी खुलती हैं दिन में रात करती हैं, तसव्वुर में भी अब ये तो सकूं लेने नहीं देती। तेरी यादें मुसलसल प्यार की बरसात करती हैं, नहीं होती जुबां कोई दिलों की आजमाइश में, निगाहें ही मोहब्बत की शुरुआत करती हैं।

जहां वादियों में नए फूल आए, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी।

हौसलों के आगे तो कोई पर्दा नहीं होता, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता।

कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं किसी के लफ्जों की जरूरत होती है।

वफा में निर्जलों को मिला क्या है, इश्क को सरेराह यूं रुस्वा करना, बंदगी का फिर तेरी सिला क्या है।

वो समझे धूल झोंक गई आंखों में हमारी और हमने बस चुपचाप जमीन पर रख दिया उन्हें पलकों से उतार कर।

कुछ पन्ने कम पड़ गए तो कभी स्याही सूख गई। कुछ इस तरह से मेरी कहानी अधूरी रह गई।

मितस्ता गीतमाला का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें हमारी ईमेल आईडी radiovitasta@gmail.com पर भेजिए, ताकि हम प्रोग्राम को और भी बेहतर आपकी पसंद के मुताबिक बना सकें।

अपने दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलता हूँ किसी और प्रोग्राम में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहेंगे हमारे मेहमान राजेंद्र रहबर। आप किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। रहबर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया जी।
0: आपके कलम से निकली एक नज्म है, तेरी खुशबू में बसी खत।
1: मैं जलाता।
0: हाँ बिल्कुल, हम अपनी बातचीत इसी नज्म से शुरू करते हैं।
1: शुक्रिया।

0: रेवर साहब, क्या तसव्वुर रहा होगा उस वक्त जब आपने ये नज़्म तैयार करके अपने सुनने वालों तक पहुंचाई?
1: बात यूं है मराठा साहब कि आमतौर पर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे उन ख़तों को जो उसे उसने बड़ी देर संभाल कर रखा होता है उन्हें ज़ाया करने की, उन्हें फाड़ देने की या जला देने की नौबत आ जाती है। तो ये एक सदियों का भटकता हुआ प्रश्न था जिसका जवाब मैंने दिया है कि उसे क्यों ना, गंगा पवित्र नदी है, हम कोई हमारी धार्मिक किताब जैसे गीता है उसको दीमक चाट जाए तो हम उसे बहते हुए पानी में बहा देते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना उन खतों को गंगा में बहाया जाए
0: जबकि गंगा का पानी भी निर्मल है।
1: हाँ, बहुत पवित्र माना जाता है।
0: और फिर मखमली आवाज जगजीत सिंह से कैसे राबिता हुआ और उन्होंने अपनी आवाज बख्शी और मुझे लगता है कि काफी मशहूर हुई ये नज़्म आपकी?
1: हाँ हाँ, ये पिछले 30 साल से जगजीत सिंह गा रहे थे इसको, 1980 से लेकर टिल हिज डेथ उन्होंने इसे गाया है। तो मैं चंडीगढ़ में रहा करता था और मेरे पड़ोस में एक शायर साहब रहते थे बड़े मशहूर, प्रेम वार बर्टनी, उन्होंने 22 फिल्मों के गाने भी लिखे थे बॉलीवुड में, और वो बाद में चंडीगढ़ सेटल हो गए तो शाम को हमारी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। तो ये नज़म मैंने उन्हें सुनाई, उन्होंने फौरन इसे सुनते ही कहा कि इस नज़म को जगजीत सिंह जी गाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने मुझे जगजीत सिंह का एड्रेस भी अता फरमाया और कहा कि इसके कितने स्टेंजे हैं। मैंने कहा कि इसके 8 स्टेंजा हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 स्टेंजा जगजीत सिंह को भेज दें
0: जी।
1: मैंने कहा कि वो आप ही सिलेक्ट कर दें, क्योंकि उनका बैकग्राउंड बॉम्बे की थी, जगजीत सिंह की वो समझता था कैसी चीज़ पसंद करते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 स्टेंजा सिलेक्ट कर दूँगा, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद उनकी मौत वाक़या हो गई और मैंने फिर खुद ही जगजीत सिंह को ये किताब भेजी। मल्हार किताब मेरी छप के आई थी उन दिनों, उसमें ये किताब शामिल थी। ये 75-79 की बात है
0: जी।
1: तो जगजीत सिंह ने इसे गाना शुरू कर दिया उसी वक्त, और मैंने उनके 2 एल्बम देखे, एक कनाडा का बना हुआ था, एक इंग्लैंड का, उन दोनों में ये नज़म शामिल थी। फिर लेकिन उन्होंने 3 बंद गाए इसमें से, तो नज़म कुछ 2 मिनट और 28 सेकंड की टोटल अवधि थी उसकी, जो इनसफिशिएंट मालूम होती थी। तो फिर मैंने पूरी नज़म उनको भेज दी, उसमें से उन्होंने 4 स्टेंजा सिलेक्ट करके गाए और अब ये 4.25 मिनट की इसकी अवधि है।
0: जी जी, इस तरह से ये नज़्म काफ़ी लोगों ने पसंद इस नज़्म को किया।
1: हाँ, इस नज़्म को बेपनाह मकबूलियत मिली है, जैसे सहर दयानवी की नज़्म ताजमहल को, या फिर हफीज़ जलंधरी की नज़्म अभी तो मैं जवान हूँ। तो मेरी नज़्म भी ख़ास तौर पर नई जनरेशनों में ये बहुत मकबूल है, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी लोग इसको जानते पहचानते हैं और पसंद करते हैं।
0: रेवर साहब, आपकी लिखाई में जब आप कलम से अपना लिखना शुरू करते हैं तो उर्दू को इस्तेमाल में लाते हैं, उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से आपने उर्दू सीखा? और
1: ऐसे है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ सारी तालीम उर्दू ही में दी जाती थी। हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, ये सभी सब्जेक्ट उर्दू में पढ़े, और हमारे स्कूल की दीवारों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे उर्दू के शेर लिखे रहते थे। जैसे पहली जमात हमारी जो थी उसकी एक दीवार पर शेर लिखा हुआ था कि कदर सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। तो हमारे चौथी
0: तौर पे स्कूलों में इस तरह के अशार लिखे जाते थे
1: उन दिनों, होते थे, अब तो नहीं होते
0: ऐसे अशार, नहीं होते हैं जी,
1: अब तो स्लोगन से होते हैं या चार्ट लगे होते हैं। तो हमारे चौथी क्लास के मौलवी साहब थे, मौलवी अब्दुल कादर, वो एक शेर गुनगुनाया करते थे इस क्लास में पढ़ाते, उधर चक्कर लगाते वो शेर बोलते जाते थे कि वो शेर यूं था कि या इलाही मिट ना जाए दर्द दिल, मिटने वालों को मिटाए दर्द दिल। ये शेर वो गुनगुनाया करते थे तो मुझे भी याद हो गया, और कई देर तक ये मुझे आज भी याद है। और एक हमारे ये भी रिवाज था कि क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था और शेरों का मुकाबला कराया जाता था।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: जैसे आजकल अंताक्षरी का रिवाज चल पड़ा है, इसी तरह वो शेरों का मुकाबला होता था, और हमें कई हमारे जो सबक था वो शेरों की सूरत में भी याद कराया जाता था। जैसे 8 शहरों के नाम एक शेर में आ जाते हैं, ये शहर शायद अफगानिस्तान में है या ईरान में, ईरान के भी कुछ शहर हैं, उनका यूं सा शेर, समरकंद, कोकंद, खेवा, खुजंद, ये चारों
0: ये सारे शहर हैं,
1: शहर हैं
0: जी जी।
1: समरकंद, कोकंद, खेवा, खुजंद, बदख्शां, बुखारा, बलख, ताशकंद।
0: बिल्कुल सारे शहर है अफगानिस्तान, ताशकंद जैसे, बुखारा वगैरह।
1: हाँ जी, बलख, बुखारा मशहूर जगह हैं। तो ये शेर हमें आज भी याद है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने नाम हमें शेर की सूरत में याद कराए थे। और शहनशाह अकबर ने जो हिंदुस्तान में फतूहात हासिल की थी, उनके बारे में भी एक शेर मुझे आज याद है जो मास्टर जी ने हमें याद कराया था। फतूहात अकबर जो था शाह हिंद, उड़ीसा व बंगाल, गुजरात, सिंध, ये वो इलाके थे जो अकबर ने फतह किए थे। तो वे भी एक शेर में हमें याद हैं आज तक।
0: रविंद्र साहब, हम अपनी बातचीत तो जारी रखेंगे आपके साथ, जो आपकी ज़िंदगी का सफ़र है हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आपकी पसंद का कोई गाना हो जो हम अपने तमाम सुनने वालों को उन तक पहुँचाना चाहेंगे।
1: हाँ जी, मुझे ये एक हीर रांझा फिल्म का गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये मुझे बेहद पसंद है।
0: बिल्कुल, रफ़ी साहब की आवाज़ है।
1: हाँ जी,
0: बहुत ही शानदार गाना है, और इस फिल्म में राजकुमार हैं और इस पर पिक्चराइज था ये गाना, मरहूम राजकुमार। तो आपको हम ये गाना सुनवाते हैं।

0: ड्राइवर साहब, ये नगमा आपने सुना और तमाम सुनने वालों को ज़रूर ये गाना भी पसंद आया होगा, क्योंकि रफ़ी साहब का ये सदाबहार गाना है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने जब इस बातचीत की शुरुआत की थी आपकी एक नज़्म से शुरुआत की थी, लेकिन आपकी पैदाइश, इब्तदाई तालीम ये कहाँ पर हुई?
1: ज़िला गुरदासपुर की एक तहसील है शकरगढ़, तो तहसील शकरगढ़ का सदर मुकाम कस्बा शकरगढ़ था, वहीं मेरी पैदाइश हुई थी।
0: शकरगढ़ तो अब पाकिस्तान में है।
1: हाँ, वो तहसील एक पाकिस्तान में चली गई, बाकी तीन तहसीलें पठानकोट, बटाला और गुरदासपुर इंडिया में आ गई। तो मेरे वालिद साहब वहाँ पंडित लोकचंद एडवोकेट थे, तो जब 1947 का तकसीम मुल्क हुआ तो लाखों परिवारों की तरह हमारा परिवार भी आवारा वतन हुआ और हम लोग पठानकोट में आ गए, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ ब्याही हुई थी। उस वक्त लोग उन्हीं के पास गए थे जहाँ कोई रिश्तेदार कहीं बैठा हुआ था, वो लोग जो हिजरत करके आए थे पाकिस्तान से, वो वहाँ अपने रिश्तेदारों के पास चले गए थे। तो हम सितंबर 1947 में पठानकोट आ गए थे, तो उसके बाद से हम यहीं रह रहे हैं पठानकोट में। और मैंने एक शेर भी लिखा हुआ है कि पठानकोट में रहते हैं एक ज़माना से,
0: क्या बात,
1: इसी के दम से हमारा भी नाम रोशन है।
0: क्या बात। ये रेवर साहब, आपके घर में तो मुझे लगता है कि शायरी वगैरह ये चीज़ें तो आपके वालिद मोहतरम वो तो वकील थे, लेकिन ये अचानक
1: मेरे बड़े भाई
0: शायर
1: साहब
0: बनने का? जी,
1: मेरे बड़े भाई साहब श्री ईश्वर दत्त अंजुम साहब, वो दिल्ली में रहते हैं आजकल, वो शायर हैं और
0: अच्छा।
1: वो बहुत अच्छे तरन्नम में गज़लें गाया करते थे। हर संडे को अखबारों में 8-10 गज़लें छपती थी, तो वो उन सभी को अपने बहुत अच्छे तरन्नम में गाया करते थे और मैं उन्हें सुनता रहता था बड़े शौक़ से, और मुझे उर्दू के अल्फाज बहुत अच्छे लगते थे। मेरे दिल में ये उमंग पैदा हुई कि मैं भी ऐसा ही लिखूंगा, शायर बनूंगा, और जिस तरह दूसरे शायरों का कलाम छपता है, उनके बाद फ़ोटो भी छपते थे कई मैगजीनों में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही बनूंगा।
0: इसके लिए कोई ख़ास तालीम हासिल करने का मौका मिला?
1: तालीम शायरी के लिए तो नहीं, भाई साहब को सुनते सुनते ही मैं
0: जो आपके
1: लिखने
0: शेर
1: लग
0: को
1: गया।
0: संभाले, जो आप
1: हाँ
0: लिखेंगे उनको संभाले।
1: हम बाद में मैंने पंडित रतन पंडोरवी जो पंजाब के बहुत उस्ताद शायर थे, उनसे अपने कलाम पर इसलाह ली, उनसे ये शायरी का हुनर सीखा, और मेरे बड़े भाई साहब का भी बड़ा योगदान रहा है इसमें। वो मुझे किताबें ला के देते थे, एक बार अमृतसर ले गए मुझे, और पठानकोट में साहिर लुधियानवी की किताब नहीं मिल रही थी, वो अमृतसर ले गए और वहाँ से उन्होंने मुझे साहिर लुधियानवी की किताब ख़रीद के दी, और वो मैंने पढ़ी, और उस साहिर लुधियानवी का कलाम मुझे इतना पसंद है कि 2-3 बार किताब पढ़ने से मुझे वो पूरी तरह ज़ुबानी याद हो गई थी पूरी किताब।
0: जी जी, अदबी सफ़र आपका जैसे शुरुआत हुई है आपके अदबी सफ़र की, पहली गज़ल नज़म या कोई शेर जो आपको याद है जहाँ से आपने इस फन में शुरुआत की?
1: उन दिनों रिवाज था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था फर्स्ट ईयर में, हिंद समाचार अखबार निकलता था जलंधर से उर्दू का, जो
0: आज भी निकलता है।
1: तो उसमें एक पंक्ति दी जाती थी हर संडे को, शायर लोग उस पंक्ति पर लिखते थे और वो अगले एडिशनों में शाया होते थे। तो एक बार उन्होंने पंक्ति दी कि तस्वीर बन गया तेरी तस्वीर देखकर, तो मैंने इस पर 5 शेर कह के अखबार को भेजे। नौरिया राम दर्द नकोदरी एडिटर हुआ करते थे, उन्होंने वो 5 शेर तो नहीं शाया किए, लेकिन 2 शेर उन्होंने शाया कर दिए। वो 2 शेर यूं थे कि तस्वीर बन गया तेरी तस्वीर देखकर। तो मैंने जो शेर लिखे 5 उनमें से 2 शेर जो शाया हुए थे उन्हीं को मेरे पहली गज़ल समझना चाहिए। वो शेर यूं हैं कि तूने लिखा है भूल जा गुजरे हुए वो दिन, हैरान हो गया हूँ मैं तहरीर देखकर, सब पूछने लगे मेरे दिल की हकीकतें, हर वक्त तेरी याद में गंभीर देखकर।
0: क्या बात, क्या बात। महफिलें मेरे ख्याल में बहुत सारी मुनक़द होती हैं और काफ़ी ऐसी महफिलें होंगी जहाँ पे आपने शिरकत की। कितने लोगों के साथ जो इस आपके फ़न के साथ जुड़े हैं, किन किन लोगों के साथ आपने पढ़ा है अपने?
1: मैंने भारतवर्ष के तकरीबन तमाम काबिले ज़िक्र शायरों के साथ कलाम पढ़ा है, जैसे कैफ़ी आज़मी साहब, सरदार जाफरी साहब, और जितने भी बड़े नाम हैं इस वक्त, वसीम बरेलवी हैं, बशीर बद्र हैं, और सिर्फ एक हसरत रही है मेरे दिल में कि मुझे साहिर लुधियानवी के साथ कभी मुशायरा पढ़ने का मौका नसीब नहीं हुआ, बाकी तकरीबन तमाम काबिले ज़िक्र शायरों के साथ मैंने कलाम पढ़ा है।
0: جی آپ کی نظم جس کا ہم نے ذکر کیا تیری خوشبو میں بسے خط، یہ پاکستان میں کافی مشہور رہی اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے کچھ لوگوں کے تاثرات ملے اس نظم کے بارے میں.
1: اس کے تاثرات تو جگجیت سنگھ نے ایک بار اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ راولپنڈی میں یہ نظم انہوں نے سنائی تو پھر فرمائش ہوئی کہ ایک بار اور سنائیں، اور جب دوسری بار بھی سنا چکے تو تیسری بار فرمائش ہوئی کہ یہ سنائیں، تو تین بار انہوں نے راولپنڈی میں اور انگلینڈ لندن کی ایک محفل میں دو بار یہ انہوں نے سنائی. اس طرح یہ دوسرے دیشوں میں پسند کی جا رہی ہے اور ہمارے جو پاکستان کے بھائی ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں، حالانکہ اس میں گنگا کا ذکر ہے.
0: جی جی جی جی رہبر صاحب، بات چیت جاری رہے گی، یہاں پہ آپ کو رکنا پھر سے پڑے گا کیونکہ ایک گانے کی گنجائش ہے.
1: ہاں گنجائش
0: وہ بھی
1: ہے
0: آپ
1: تو
0: کی، آپ کی چوائس کا
1: یہ گانا لگائیں، قسمیں وعدے پیار وفا.
0: جی جی اپکار فلم سے گانا ہے منا ڈے کی آواز سے.
1: ہاں جی یہ میں سننا
0: یہ گانا
1: چاہوں
0: آپ
1: گا.
0: سنیں گے جی.

0: जाहिर है कि जब इस तरह के गाने सुनते हैं जैसे ये गाना अभी आपने आपकी चॉइस पे हमने सुनाया, कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, तो इस तरह का आपका मिजाज है शेर लिखने का। कुछ किताबें होंगी जिनमें इस तरह के शेर दर्ज हैं?
1: हाँ, मेरी 7-8 किताबें छपी हैं। पहली किताब तो थी मेरी आगोशे गुल, वो एक तज़किरा था शिमला हिल्स के 22 उर्दू शायरों का। उसमें मैंने जिक्र किया है, उनका कलाम शाया किया है, उनके फ़ोटो शाया किए हैं, उनके हालात ज़िंदगी शाया किए हैं। उसके बाद फिर 1962 में मेरा अपना मजमूआ कलाम कलस के नाम से शाया हुआ था। उसके बाद 75 में मल्हार नाम से मेरी एक किताब देवनागरी स्क्रिप्ट में शाया हुई थी। फिर 78 में मेरी किताब और शाम ढल गई के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे बिहार उर्दू अकेडमी ने अवार्ड दिया था। और फिर 97 में मेरी एक किताब ज़ेब सुफन के नाम से उर्दू में शाया हुई थी, इसे लैंग्वेज डिपार्टमेंट पंजाब ने बेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ द ईयर 1997 करार देते हुए मुझे अवार्ड दिया था। उसके बाद मेरी किताब शाया हुई, उसका नाम था तेरे खुशबू में बसे खत। अच्छा, ये तेरे खुशबू में बसे खत नाम मैंने कैसे रखा, ये भी एक दिलचस्प वाक्या है कि टी सीरीज़ ने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में एक कैसेट निकाली, उसका नाम रखा उन्होंने तेरे खुशबू में बसे खत। उसमें मेरी पोएम भी है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिर उसके बाद HMV ने सारे गामा ने एक निकाली एल्बम, उसका नाम भी रखा तेरे खुशबू में बसे खत। तो फिर मेरा मजमूआ कलाम छपने वाला था उन दिनों, मैंने भी नाम रख दिया तेरे खुशबू में बसे खत। तो उसके बाद फिर 2008 में मेरी एक किताब याद आऊंगा, हिंदी और उर्दू दोनों ऑडिशन हैं उसके, वो छपी है।
0: आमतौर पे हम कहते हैं कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आप इस बुलंदी पे हैं, आप ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे?
1: मेरी जो अहलिया हैं वो शायर तो नहीं है, भजन वगैरह गाती
0: रहती हैं, लेकिन आपको सपोर्ट तो करती होंगी।
1: हाँ, मेरे मिलने वाले जो आते हैं शायर लोग बड़ी तादाद में आते हैं।
0: यहाँ पे आपने एहतियात बरतना होगा क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाए।
1: उनको चाय वगैरह पिलाने की जिम्मेवारी मेरे दोस्तों को होनी ही होती
0: है। रहबर साहब, कभी आपको गुस्सा आता है?
1: बहुत कम। कहते हैं जो दरवेश लोग होते हैं ना, वो अपना गुस्सा अपनी जान पर ही निकालते हैं, तो मैं भी शायद ऐसा ही करता हूँ।
0: जी, उम्र के इस पड़ाव में हैं आप और यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी क्या कुछ काम हो रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है?
1: जो नज़म मैंने कहनी है वो अभी नहीं हुई है शायद, तो एक शेर भी मेरा इस तरफ इशारा करता है। वो शेर यूं है, सुनने को जिसे गोश बार आवाज़ है दुनिया, सुनने को जिसे गोश बार आवाज़ है दुनिया, वो गीत अभी साज के पर्दों में छुपा है।
0: जी,
1: तो उम्मीद रखनी चाहिए शायद वो गीत भी कभी साज के पर्दों से बाहर आए। तो मेरी आमतौर पर ये आदत है कि मैं सुबह के वक्त 3 बजे 3:30 बजे उठ के लिखता हूँ, और जो चीज़ उस वक्त लिखी जाती है वो बहुत अच्छी होती है, और जो चीज़ लिखने की तमन्ना है वो किस वक्त बाहर आ जाएगी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो शायराना तबीयत या परमात्मा के हाथ में ही है ये सारी बात।
0: जी जी जी, आपका कोई मनपसंद शेर होगा जो आप यहाँ कहना चाहेंगे, कोई आपकी?
1: पिछले दिनों मैंने एक अजीब रंग में गजल कही है, जिस रंग मैंने आज तक नहीं कही, यानी हास्यरस में। उर्दू शायरी संजीदा शायरी होती है आमतौर पर, और मैं भी संजीदा शायरी ही लिखता रहा हूँ, लेकिन एक मजाया नज़म पता नहीं कहाँ से गजल उबर के आ गई पिछले दिनों, बिल्कुल नई है, कि दोस्तों से फरेब खाया कर और फिर दोस्ती निभाया कर। दूसरा शेर है कि हो के दिन भर के काम से फारिग शाम को मैकदे भी जाया कर।
0: क्या बात,
1: ये मशवरे हैं इसमें, गलत मशवरे ज्यादा है। हो के दिन भर के काम से फारिग शाम को मैकदे भी जाया कर, और जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़ कर नहाया कर।
0: क्या बात है
1: जल की हर बूंद कीमती है मियाँ, एक दिन छोड़कर नहाया कर। एक शायर को आज मैंने कहा शायरों को आदत होती है जबरदस्ती शेर सुनाने शुरू कर देते हैं
0: जबरदस्ती।
1: हमारे एक शायर दोस्त से, प्रोफेसर बिमल कृष्ण अश्क, वो कहा करते थे, लो रैबर भाई 5 गजलें सुनो, तो 5 गजलों के लिए वो बुक कर लेते थे। तो ये शेर उसी तरह इशारा करता है कि एक शायर को आज मैंने कहा, बिन कहे शेर मत सुनाया कर, और देख कर राह में हसीनों को, रास्ते से भटक न जाया
0: क्या
1: कर।
0: बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात।
1: और एक शेर और याद आ गया इसका मुझे, वो भी सुन लीजिए कि सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देंगे, सच्चे दिल से तुम्हें दुआ देंगे, हम फकीरों को कुछ खिलाया कर।
0: क्या बात है जी जी जी। आपकी नजर में औरत क्या है एक तख्लीकार होने के नाते?
1: उर्दू शायरी जो है, जहाँ तक उर्दू शायरी का तअल्लुक है, मैं तो उर्दू से ही वाबस्ता हूँ और उर्दू ही का खादिम हूँ। उर्दू का मिजाज जो है ये लड़कपन से आशिकाना रहा है और रहेगा। अगर ये रोमांटिक शायरी को हटा दिया जाए उर्दू शायरी में से, तो मेरा ख्याल बाकी जो है वो इतना अपीलिंग नहीं रह जाता। इसलिए औरत का जिक्र हमारे शेरों में अक्सर होता है और हमारे तमाम बड़े शायरों ने रोमांटिक शेर लिखे हैं और गालिब ज़ौक मोमेंट से लेकर आज
0: जी
1: तक भी
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लिखते आ रहे हैं।
0: और मुझे लगता है कि कामयाबी भी हासिल होती है इस तरह के शेर।
1: ये जो रुमानी शायरी होती है अल्टीमेटली यही जिंदा रहती है,
0: क्योंकि आपके जो जितने भी आपकी लिखाई हम पढ़ते हैं उसमें भी इस तरह का जिक्र है, कहीं कहीं जगह पे मिलता है हमको।
1: ये एक ऐसा जज्बा है जो हर वक्त इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा कायम रहता है, वो किसी शक्ल में भी हो, तो ये भी मोहब्बत का एक इजहार ही है। लेकिन शेर को पढ़ते वक्त आप उसे चाहे जिनसी मोहब्बत की तरफ ले जाएं या परमात्मा की मोहब्बत की तरफ ले जाएं, दोनों तरफ उनके मीनिंग निकलते होते हैं आमतौर पर।
0: जी जी जी। एक तो जगजीत सिंह साहब ने आपकी नज्म को अपनी जुबान, अपनी मीठी सुरीली आवाज दी, इसके अलावा किसी फनकार से आपका कोई कलाम?
1: अनुराधा पौडवाल ने गाया है और एक नॉर्वे में रहते हैं गायक जहान दत्ता उनका नाम है, उन्होंने मेरी एक गजल गाई है, वो उसका नाम गजल यूं है कि बस चंद ही दिनों के थे डेरे चले गए, खाना बदोश लोग सवेरे चले गए, हाथों में अपने जाल सुनहरी लिए हुए गहरे समंदरों के मछेरे चले गए, कुछ मैकदे की समत गए झूमते हुए, कुछ मन चले फकीर के डेरे चले गए। ये गजल उन्होंने गाई है। उसके अलावा ये पठानकोट में बड़े मशहूर एक गायक रहते हैं कुलदीप राय, वो भी मेरा कलाम गाते हैं, तीन चार चीज़ें गाते हैं वो मेरी, आगे उनके शागिर्द भी गाते हैं।
0: जी जी जी। आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, क्या इस तरह का आपने कोई आगे रखा है कि कोई स्कूल या कोई अटेंड करेंगे जहाँ पे लोग आपके पास सीखने आए?
1: ऐसे है कि ज़ाती तौर पर लोग आते रहते हैं, मेरे पास कोई स्कूल वाला सिस्टम नहीं है। जो आता है और मुझसे कोई मशवरा व तलब करता है तो वो मैं उसे ज़रूर बताता हूँ जितना मुझे आता है। तो मैं कोई उस्ताद शायर नहीं समझता अपने आप को कभी, क्योंकि बड़े बड़े उस्ताद हो चुके हैं, हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दोस्ताना मशवरे ज़रूर देता हूँ और जो लोग मेरे पास आते हैं मैं उन्हें अपना शागिर्द नहीं करता कभी, सिर्फ दोस्त समझता हूँ उन्हें।
0: जी रेवर साहब, आपकी चॉइस पे कोई गाना हो जो यहाँ हमारे सुनने वालों को हम पेश करें?
1: लग जा गले, ये लता मंगेशकर जी का है, लग जा गले।
0: ये गाना बड़ा शानदार है, सुरीला गाना है।
1: हाँ जी।
0: तो ये गाना आपको पसंद है?
1: हाँ जी।
0: सुनना चाहेंगे?
1: जरूर सुनना चाहूंगा और मेरे जो श्रोता हैं वो भी सुनेंगे तो खुश होंगे इसको।

0: चलते चलते, चूँकि हमारे इस प्रोग्राम का समय मुकम्मल हुआ चाहता है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे जो आजकल के शायर हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम होगा आपकी तरफ से?
1: उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो छंद शास्त्र ज़रूर सीखें। खुली शायरी भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन इतनी नहीं जितनी छंदबद्ध शायरी को पसंद किया जाता है। उसमें जब रदीफ़ और काफ़िया आते हैं, टणकता हुआ काफ़िया हो जैसे ये मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, ख्वाब इसमें काफ़िया है, जैसा है रदीफ़, मेरे ख्याल सा है, मेरे ख्वाब जैसा है, तुम्हारा हुस्न महकते गुलाब जैसा है। तो ये जब काफ़िया और रदीफ़ आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, और खुली कविता हो तो इतनी प्रभावित नहीं करती सुनने वालों को, और जो शायर लोग लिखेंगे छंद शास्त्र के अंदर रह के उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दी जाती है दूसरों की निस्बत।
0: जी जी, अपने रेडियो के बारे में एक सवाल चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा, करना चाहूँगा कि रेडियो भी आप सुनते हैं मैंने सुना है, और आकाशवाणी कठुआ आप सुनते हैं?
1: हाँ जी सुनते हैं।
0: कोई यहाँ का
1: बहुत लोग
0: पॉपुलर प्रोग्राम है कोई जो आपको ज़्यादा पसंद है?
1: वो मैं जो प्रोग्राम ज़्यादा सुनता हूँ वो है यादें बन गई गीत।
0: जी जी,
1: वो शनिवार को आता है, शनिवार रात 10 बजे से 11 बजे तक वो मैं सुना करता हूँ। उसके अलावा और प्रोग्राम भी, गाने के फरमाइशी
0: प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहेंगे?
1: इस प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बड़े इश्तियाक के साथ सुनता हूँ, कभी नागा नहीं डालता इसे सुनने में।
0: जी जी।
1: और ये मेरा ख्याल है कि आम लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं, और अपनी अपनी जो उनकी यादें हैं वो यहाँ रिकॉर्ड करवाते हैं, और उसके साथ उनकी याद से मिलता जुलता गाना भी आप लगाते हैं।
0: जी जी।
1: और ये आप ही की जेरे निगरानी होता है काम।
0: बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर साहब, आप हमारे साथ बने रहे इस कार्यक्रम में, आप हमारे यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हैं काफ़ी मशकूर, बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं और उन कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं जो रखते हैं आपसे सरोकार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर। पेश कर रहे थे रमेश मराठ।

सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करे। आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ जानकारी ला रहे हैं जो अंबाला के इतिहास के बारे में है, वो हम कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप उस कार्यक्रम को भी सुनेंगे। सभी अंबाला वासियों को हक है हमारे इतिहास के पन्नों को पलटने का, इतिहास के बारे में जानने का और हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। रेडियो वितस्ता FM 90.0 प्रसारण करता है अंबाला छावनी से और इसको स्वीकृत किया गया है अंबाला के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। हम बात करते हैं अंबाला की और कोशिश करते हैं कि अंबाला को विश्व पटल पर रखें आपके सहयोग के साथ। दोस्तों, जाते जाते आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सप्ताह हर साल स्वास्थ्य और संतुलन आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ताकि हम सब अच्छे खान पान की आदतों को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। तो आइए इस सप्ताह से प्रेरणा लेकर अपने आहार में पौष्टिक चीजों को शामिल करने का संकल्प लें। यह था आज का विषय और आज की जानकारी। और अब बात करें एक छोटी सी शायरी की वितस्ता के नाम और आप सभी श्रोताओं के नाम। आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता की लहरों सा बहता रहे ये प्यार, वितस्ता की लहरों सा बहता रहे ये प्यार, हर सुर में बसे अपनापन, हर धुन में इकरार, जुड़े रहे यूं ही हम सब दिलों के इस किनारे, जुड़े रहे यूं ही हम सब दिलों के इस किनारे, वितस्ता की सदा है हम सब के सहारे, वितस्ता की सदा है हम सब के सहारे। जी हां दोस्तों, अब आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं जल्दी से। कल 8 सितंबर 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम पूरे दिन के लिए आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत। 7:05 पर कार्यक्रम घर परिवार का एपिसोड 6 होगा और शीर्षक होगा परिवार और समाज। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय होता है, आप सुनेंगे कहानी नाटकीय प्यार, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 आप सुनेंगे मिले जुले गीत कार्यक्रम, शीर्षक होगा अपनी बात। और 10 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। हमारे साथ होंगी बॉलीवुड सिंगर नीरजा पंडित, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल आप सुनते हैं, 7 बजे होगा कार्यक्रम वितस्ता गीत माला एपिसोड 3। और ये कार्यक्रम तैयार किया गया है नफ्स अंबालवी साहब के कविताओं और गजलों पर। 8:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुहांगना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम हमारे ना हो सके। जी हां दोस्तों, ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे और आशा करते हैं कि आप अपने सुझाव भी हमारे इसी नंबर पर भेजेंगे जो हम आपको नोट कराने जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका साथ और आपका प्यार यूं ही बना रहे। मिलते हैं फिर एक नए प्रसारण के साथ कल सुबह 6 बजे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। तब तक के लिए भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।